FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की प्रथम तिथि तदनुसार 22 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58:40 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई

0: घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रभु जीवन में अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, प्रभु आप कृपा करें।

बड़ा सुंदर प्रसंग है रहीम के बारे में। रहीम कृष्ण भक्त थे, मुसलमान थे और अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न थे। पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। उनकी एक विशेषता बहुत कम लोग जानते हैं कि वे स्वभाव से बड़े महान दानी थे। बहुत से दानी हुए, रहीम जैसा दानी नहीं हुआ। विशेषता यह थी कि जैसे जैसे दान करने के लिए अपने हाथ उठाते थे, अपनी आंखें झुका लेते थे, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, यह कैसा दान है। रहीम को तो दान करने में शर्म आती। और यह बात फैलते फैलते गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंच गई और उन्होंने दो पंक्तियां लिखकर रहीम के पास भेजी।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, कुमार गंधर्व, मोहम्मद अजीज और साथी अनूप चोरोटा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्त वृत्ति को लक्ष्य करते हुए कहा है, कामे ही नारि प्यारि जिमे, लोभी ही प्रिय जिमे दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कामी मनुष्य को स्त्री तथा स्त्री चिंतन प्रिय होता है, परंतु उसका कामावेश उस स्त्री की प्राप्ति के बाद शांत हो जाता है। वास्तव में काम और क्रोध आवेश हैं। ये आते तो वेग से हैं किंतु स्थायी नहीं रहते, ये शांत हो जाते हैं। दूसरी बात जो तुलसीदास जी ने कही है उसमें प्राणी की आसक्ति को मोह कहा गया है और पदार्थ की आसक्ति को लोभ। काम क्रोध का आवेश तो समाप्त हो जाता है किंतु लोभ ऐसी बुराई है जो सदैव बनी रहती है। इसमें तृप्ति ही नहीं होती। सामान्य व्यक्ति लोभ के चक्रव्यूह में फंसकर अत्यंत आसक्त हो जाता है और उसकी यह आसक्ति शमशान में पहुंचकर ही समाप्त होती है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि मनुष्य कैसा चिंतन करे, किसका चिंतन करे, अर्थात परम शांति और सुख प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। इस प्रश्न के समाधान करने के लिए ही लिखा गया है, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, अर्थात अपनी वृत्ति को उचित दिशा देनी होगी, क्योंकि यह वृत्ति यदि भगवान के प्रति बन जाए तो चित्त का दिव्यीकरण होने लगता है। अब उसमें सांसारिक चिंतन के संस्कारों के स्थान पर अप्राकृत नाम रूपादि के संस्कार एकत्र होने लगते हैं। यदि प्रभु के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के चिंतन में चित्त लग गया है तो उसमें संस्कारों का आना रुकता नहीं है, ना ही उसमें चित्त का नाश या क्षय होगा।

0: अपितु चित्त दिव्याति दिव्य होता चला जाएगा। सांसारिक व्यसनों में रहकर चित्त प्रभु के चिंतन में कैसे लगेगा? वह तो विकृत होगा ही। उसे कितना भी शुद्ध कर लिया जाए फिर भी उसके परिष्कार की आवश्यकता बनी रहेगी। शरीर तभी तक स्वस्थ और स्वच्छ रहता है जब तक उसे उपयुक्त आहार आचार तथा स्नानादि मिलता रहे। इसी प्रकार हमारा चित्त भी एक सूक्ष्म शरीर है, इसकी भी बराबर स्वच्छता और स्वस्थता का प्रयत्न करते रहना आवश्यक होता है। प्रभु के चरणों में सतत एकाग्रता ही इसका सर्वोत्तम उपाय है। हमारी वाणी कान आँख सतत उसी में लगे रहें, सब इंद्रियों को भगवान की धुन लग जानी चाहिए, यही भक्ति का स्वरूप है। भक्ति का आश्रय लिए बिना मन की सूक्ष्म मलिनता मिटती नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति पाना असंभव है जिसके मन की मलिनता केवल बुद्धि के सहारे मिट गई हो। देह में उत्पन्न ज्ञान की शक्ति मर्यादित रहती है, यदि शुद्ध ज्ञान का उदय हो जाए तो उसके सारे मैल भस्म हो जाएंगे। भक्ति ही शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास को प्रभु राम के चरणों की भक्ति परम प्रिय है। ऐसे भक्तिमय पुरुष का किसी से वैर नहीं होता, वह तटस्थ रहकर संसार की निरंतर सेवा करता रहता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय था चित्रवृत्ति, आलेख महेश चंद तनेजा का और वाचन स्वर था श्री राम गोपाल का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में परोया था सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण चंद्रश्री ने। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ देर बाद यानी 6:50 पर हमारे श्रोता जानकारी प्राप्त करेंगे कार्यक्रम खेती की बातें में। आज का विषय रहेगा शीशम की रोपाई और हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पूरे हमारे श्रोता आनंद रहेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। इस कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों का और 7:28 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से। सात बजकर 31 मिनट पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे रास लीला गोरे ग्वाल, लेखक दान बिहारी गोस्वामी और प्रस्तुतकर्ता होंगे हरि बाबू कौशिक। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में गीतांजलि के कुछ नगमों को। 9 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम, विषय रहेगा लू एवं हीट स्ट्रोक, सावधानी और बचाव। विशेषज्ञ होंगी ही डॉक्टर भारती गर्ग और आपसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा। 9:45 पर आप सुनेंगे वार्ता डिजी लॉकर आज की आवश्यकता, आलेख अमृतांशु मिश्रा और वाचन देवराज कृष्ण दीक्षित का होगा। मुझे हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम उमंग। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 11 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हेलो आकाशवाणी और 11:30 पर आप सुनेंगे

कार्यक्रम अर्पण। बारह बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS, और 12:30 पर आप सुनेंगे ब्रजलोक गीत कार्यक्रम। आज कलाकार रेखा डांगुर होंगी। एक 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम वनिता लोक। आज चर्चा का विषय होगा हीट स्ट्रोक से कैसे करें बचाव। साथ ही चर्चा होगी विश्व जैव विविधता दिवस, और कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ वार्ता। वार्ता खान पान चटपटे मौसमी आचार, प्रस्तुति होगी माया रानी की। कर 30 मिनट पर सैनिक भाइयों के लिए होगा फिल्म संगीत।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, शीशम की रोपाई दो तरह से की जाती है, एक तो सीधे रोपी गई टहनी और दूसरा वन विभाग में तैयार पौध की रोपाई। दोनों ही तरीके ठीक हैं। टहनियों से जड़ निकलने तथा पौधे के विकास में कुछ समय लगता है, जबकि पौध में जड़ पहले से ही विकसित होती है। पौधा रोपने के लिए मार्च अप्रैल में ही 3 मीटर की दूरी पर 50 घन सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोद लिए जाते हैं। गड्ढा खोदने के दौरान गड्ढे की ऊपरी 20 सेंटीमीटर मिट्टी को एक तरफ सुरक्षित रखा जाता है। मई महीने तक गड्ढों को खुला ही रहने देते हैं ताकि मिट्टी जनित कीट और रोग के बीजाणु नष्ट हो जाएं, और जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में गड्ढों की भराई की जाती है। प्रति गड्ढा 10 से 12 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 150 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 40 से 50 ग्राम फॉलिडोल धूल को गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में मिला करके गड्ढा को भर दिया जाता है। गड्ढे के बीचों बीच थाला सहित पौधा रोपा जाता है। पौधे को मिट्टी में बिठाने के पूर्व थाले के ऊपर लगी हुई पॉलीथीन बैग को आपको हटा देना चाहिए। खरपतवारों को भी अलग कर देना चाहिए। गड्ढे में पौधों को इस प्रकार बैठाया जाए कि तना का वह भाग जहां से जड़ें निकलती हैं मिट्टी की सतह से ऊपर उठा रहे। इस हिस्से को मिट्टी में कभी नहीं ढकें। गड्ढे में पौधा बैठाने के बाद चारों तरफ से मिट्टी में ठीक से दबा दिया जाना चाहिए ताकि पौधा हिले डुले नहीं। पौधा रोपने के बाद उसमें भरपूर सिंचाई की जाती है। वर्षा प्रारंभ होने तक 2-3 दिनों पर नियमित सिंचाई करते रहना चाहिए। जो किसान गड्ढा नहीं खोदे हैं वे भी अगस्त सितंबर तक पौधों की रोपाई कर सकते हैं, अभी से गड्ढा खोद लें। पौध रोपने के करीब 15 से 20 दिनों बाद पहली सिंचाई निराई की जाती है। वर्षा समाप्त होने पर दूसरी निराई करते हैं तथा जनवरी के अंत या फरवरी के शुरू में तीसरी निकाई के बाद पौधों के चारों तरफ मिट्टी चढ़ा करके उसे छोड़ देते हैं। आमतौर पर लकड़ी देने वाले पौधों में खाद उर्वरक देने का प्रचलन नहीं है, लेकिन इसकी अच्छी वृद्धि के लिए प्रारंभिक अवस्था में वर्षा आरंभ के पूर्व कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट और अन्य उर्वरक

0: कों का प्रयोग तथा एक सिंचाई देना काफी लाभप्रद होता है। शीशम में दीमक का प्रकोप जड़ के आसपास मिट्टी तक ही सीमित है, तो इस दीमक पर नियंत्रण पाने के लिए क्लोरोपाइरीफास 20% तरल की 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल करके तने के नीचे मिट्टी में अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं तो दीमक का प्रकोप नहीं हो पाता है।
1: अभी आप कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विषय था शीशम की रोपाई और विशेषज्ञ थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञातभुषुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरंगा तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ तटीय आंध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् एकोननवतिः धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 30-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्यचतुर्दश कन्दुकक्षेपणचक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

और आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत का ये पहला नगमा। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म शोर से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों की।

समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत का, आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म गाइड में, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

किशोर कुमार के गाए फिल्म ब्लैकमेल के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न

0: पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं,

0: मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। पहले राज्य कर्मचारियों को 58% डीए मिलता था, अब उन्हें 60% डीए का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
1: रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह को इस नए 5 सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस आयोग पर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये एफएओ ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: बीते माह 9 से 23 अप्रैल तक मनाए गए पोषण पखवाड़े में गोरखपुर जिला गतिविधियों के आयोजन व फीडिंग के मामले में प्रदेश में अव्वल रहा है। यह जानकारी गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिनव मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से ही जिले को विभिन्न श्रेणियों में लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने के कारण अब देश के युवा खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं।
3: मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों में कोई खेल नीति नहीं थी। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद खेल नीति विकसित की। हमने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में जिन भी खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, ऐसे 534 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके मेडल के आधार पर पुलिस में डिप्टी एसपी का पद भी, राजस्व विभाग में भी और अन्य विभागों में भी हमने उनको समाहित किया है, उनको सीधे नियुक्ति पत्र दिया है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 5.0 के संबंध में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि GBC 5.0 के अंतर्गत हर जिले में निवेश होना चाहिए। उन्होंने जिलों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ावा देना जरूरी है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भूमि की मांग तेजी से बढ़ी है, इसके सापेक्ष भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि FDI को आमंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: जनगणना 2027 के तहत 7 मई से चल रही स्वगणना प्रक्रिया में कल शाम तक करीब 46,93,783 लोगों ने हिस्सा लिया। राज्य भर में आज से जनगणना कर्मी घर घर जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: स्वगणना करने वाले अग्रणी जनपदों में शाहजहांपुर पहले स्थान पर है, जहां लोगों ने स्वगणना की। दूसरे नंबर पर आजमगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर बरेली रहा। राजधानी

0: लखनऊ में लगभग 98,000 लोगों ने स्वगणना की। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि अगले चरण में जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। जिन लोगों ने स्वगणना के तहत अपनी जानकारी पोर्टल में दर्ज करा दी है, उन्हें 11 अंकों वाले कोड को प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। ये प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रीतुल कुमार कल एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया तथा प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत दोनों केंद्रों पर पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचत की सलाह दी है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। बांदा जिला कल भी लगातार देश का सबसे गर्म जिला बना रहा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य की राजधानी लखनऊ में भी कल पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। प्रदेश में रात में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण लू जारी रहने की चेतावनी दी है। इस बीच जबरदस्त गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के लिए आवेदन तिथि 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले 20 मई तक ही आवेदन किए जा सकते थे। जिन छात्रों को भरे हुए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि सुधार करना है, उनके लिए एनटीए 25 से 27 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर करेक्शन विंडो खोलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए में की 2% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने 4 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, अब खेल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित कर सकते हैं देश के युवा। और जनगणना 2027 के तहत आज से शुरू होगी मकानों की गणना। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने बारे हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे और पूर्णमयी ब्रजभूमि को सदैव दंडवत नमन वंदन। आप सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब तो भैया अधिक मास खूब खूब चल रहे हो, सभी ब्रजवासी अधिक मास को खूब खूब आनंद ले रहे हैं और पवित्र पुरुषोत्तम मास को हमारे शास्त्र में विशेष ही महत्व है। यह मास के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वे हमारे ब्रजाधिपति ब्रज के राजा श्री कृष्ण ही हैं। यह लिए याको विशेष महत्व और बढ़ गयो। यह पवित्र पुरुषोत्तम मास को बड़ो ही महत्व है, अधिकस्य अधिकम फलम। यह मास में जितने अच्छो सत्कर्म किए जाएं वाको खूब खूब आनंद मिले है। कहूं जाओ कहूं ग्रस के दिए दीपक प्रकाशित कर रहे हैं, यमुना के जल को कहूं कुंडन को कहूं सरोवरन को श्री गोवर्धन नाथ की तलहटी को वृंदावन की भूमि को खूब खूब आनंदित कर रहे हैं। कहूं रास लीला है नहीं है, कहूं उनकी लीलान को आस्वादन रसिक जन ले रहे हैं। और यह समय तो भैया ऐसो आनंद छा रहे हो, कहूं बगीचा के दर्शन, कहूं फूलन के दर्शन, कहूं कदम खंडी के दर्शन देखने को मिले। तो आज अपने श्रोतान को सुनवा में दान बिहारी गोस्वामी की लिखी रास लीला गोरे ग्वाल या के प्रस्तुत करता है हरि बाबू कौशिक।

श्री राधे, आज मैं आपके श्रृंगार को कैसे वर्णन करूं? आज आपकी छवि पे मैं गत पे गयंद वारों, पग अरविंद वारों, हटी अल वृंद वारों, अल कन फंद पे गुलफ गोविंद वारों, सील तापे सिंध वारों, सकल सुगंध वारों, मुख की सुगंध पे कट पे मृगेंद्र वारों, तन छव बिंद वारों, बेनी पे फरेंद वारों, नारी नद नंद पे होट जीव बंद वारों, हांसी सुधा कंद वारों, आज कोट कोट चंद वारों, राधे मुख चंद पे।

0: श्याम सुंदर, या चंद्रमा में तो कलंक लगी भयो है और या में तो पांच दोष हैं।
1: पांच दोष हैं या में पांच दोष कौन से हैं प्यारी जी?

0: पहला दोष तो जी है कि जे दिन प्रतिदिन घटतो बढ़तो रहे है। दूसरे जी रात में चले है तो निशाचर है। तीसरे जी बंक टेढ़ो है। चौथे जी विष बंधु है। और पांचवें या में कलंक लगी ही रहे है।
1: लाड लीजू, मैंने तो या चंदा को सुंदर उज्जवल शीतल सुखदाई देख के उपमा दे डारी। मैंने दोष दृष्टि ना देखी। देखो ना, देखो आपके मुखार बिंद की छबकू देख के ये चंदा लज्जे तो है के घटा में जा छिप्यो है। रागी तेरे द्रग देखे मृग सेवित जो उजार बन कट देखे के हरी कुलह तज गयो है। दस नन के देखे ते दाड़े दड़ाड़े खात नास का के देखे कीर बनो वास लयो है। तेरी चाल देखे गजराज हो ना धरत धीर भों की मरोर मानो धनुष नव गयो है। या कंचन से अंग पे भोरा परे धाय धाय क्यारी तेरा मुख देखे सस कलाहीन भयो है।

0: श्याम सुंदर, आज आप स्तुति में तर्क रूपी वचनन सो मेरी निंदा कर रहे हो। मैं समझू हूँ, जैसे सर्प सूधे मार्ग में हूँ टेढ़ो टेढ़ो चले हैं, तैसे ही आज आपके मन की गति है।
1: ना ना प्यारी जो, मैं भूल गयो, कहा आप बुरो मान गई?
0: ना श्याम सुंदर, मैं बुरो का ही को मानू। देखो ना यह चंदा को, ये कितना सुंदर है।

0: हाँ प्यारी जू, ये चंदा है
1: जी? कहा भयो किशोरी जू कहाँ गई? प्यारी जू श्री राम है, सुनो तो। हाय हाय कहाँ गई श्री राधे, कहाँ मोसू रूह से गई? हाय हाय मोसू मान करके चली गई, मोकू यहाँ छोड़ गई। हे श्री राधे आप कहाँ हो? आप

0: अजी विशाखा जी।
1: हाँ ललिता जी।
0: सखी ज्यादा रात की बिरिया कौन राधे राधे पुकार रहे हो है? नेक सुनियो।
2: ए, श्री राधे, श्री राधे।
1: ललिता जी जी तो श्याम सुंदर की सी बानी है, चलो नेक पास चले।
0: चलो सखी।
2: हे श्री राधे।
0: प्यारे श्याम सुंदर जी आपकी कैसी दशा है रही है?

0: ताजी, मैं आज आपको कहा बताऊं, वो सब प्राणेश्वरी जी मान करके चली गई है।
1: मान करके चली गई है?
0: हाँ।
1: तो आपको कछु दोष अवश्य होएगो।
0: दोष? दोष न हो ये सखी कछु मेरो उपमा चंद दई।
1: उपमा चंद दई?

0: चंद दई प्राण वल्लभ चंदा की उपमा राशेश्वरी जी को। यदि कोटान कोट चंदन की चांदनी को इकट्ठी करके एक सोने के प्रफुल्लित कमल में विराजमान करके तब श्री राधिका जी की छवि की तुलना करी जाए।
1: तान बिहारी गोस्वामी की लिखी रासलीला गोरे ग्वाल या के प्रस्तुत करता है हरि बाबू कौशिक। यही के संग आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। सवन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: सुन रहे कार्यक्रम ब्रज माधुरी आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हैरान रह गया,
0: अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में
1: चलाते हैं,
0: रोज आकाशवाणी
1: चलाते हैं, दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है, मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
6: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत

0: बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतों, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे

0: 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्ययोजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत में कुछ नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म शराबी से, स्वर किशोर कुमार और आशा भोसले का है।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और अनीति को, फिल्म का नाम था सत्ते पे सत्ता। और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मनमोहन सिंह और साथियों को। फिल्म का नाम है वारिस।

0: जगजीत सिंह की गाय फिल्म अर्थ के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम। आज का विषय है लू एवं हीट स्ट्रोक, सावधानी और बचाव। विशेषज्ञ है डॉक्टर भारती गर्ग और आपसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, गर्मी के मौसम में सामान्यतः लू चलना, तापमान बढ़ना एक एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इन सालों में या इस समय जब बातचीत चल रही है चारों तरफ, हम सुन रहे हैं कि हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियां बन रही हैं, तो ये लू या हीट स्ट्रोक क्या होता है, इससे कितना घातक हो सकता है, किस तापमान के बाद ये परिस्थितियां पैदा होती हैं, और इन परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या आचरण करना चाहिए, अपने कामों में क्या सावधानी रखनी चाहिए, चाहे जीवन शैली की बात हो, चाहे खान पान की बात हो या व्यवहारगत हो, तो इन सब जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर भारती गर्ग साहब, जो वरिष्ठ फिजिशियन है, कार्डियक स्पेशलिस्ट है मथुरा शहर की। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो अब ये जो हीट स्ट्रोक जिसको आजकल हम चलन में कह रहे हैं,
2: हीट वेव जिसको बोलते हैं,
1: उसमें तो ये क्या मतलब, किस तापमान के बाद हम इस तरह के टर्म्स का यूज कर सकते हैं?
2: जी, जैसा कि प्रचलन में है कि ज्यादातर जो मैदानी इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा जो है हीट वेव रहती है, तो अगर ये तापमान अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर मैदानों में और 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर पहाड़ों पर होने लग जाए, तो इस परिस्थिति को हम लोग हीट वेव का नाम देते हैं। और हीट वेव की वजह क्या होती है कि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कितना जलवायु परिवर्तन इस समय हुआ हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग जो सारे विश्व को जिसने परेशान करके रखा हुआ है, जो ठंडे देश रहते थे वहां भी आजकल जो है तापमान जो है 40 डिग्री 45 डिग्री तक पहुंचने लग गया है, तो हमारा भारत तो वैसे भी जो है हमेशा से यहां पर जो है गर्मी की अधिकता रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो चीज है कि जिस तरीके से कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन रही हैं, जंगल हमारे समाप्त होते जा रहे हैं, हरियाली कम होती जा रही है, तो सूरज की किरणें जब गर्मी का मौसम आता है तो जमीन की सतह से जब वो टकराती हैं तो वापस आने के लिए उनके पास में कोई खुला हुआ स्पेस नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ जो है बिल्डिंग्स वगैरह होने से तो जो हीट जो जनरेट होती है वो ट्रैप हो जाती है,
1: मतलब उसको धरती की तरफ से एब्जॉर्ब कर लेती है, पकड़ लेती
2: उसको
1: है, उसमें
2: जो है स्पेस में आसमान में जाने का उतना मौका नहीं लग पाता है, तो वो कंडीशन जो है हीट वेव का रूप बन जाती है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब हीट वेव है तो सभी उससे प्रभावित होते हैं, और मनुष्य तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जानवर भी प्रभावित होते हैं, सभी जो है जो जीवित प्राणी हैं वो हीट वेव से प्रभावित होते हैं। तो इसके स्टेजेस हैं, अगर तापमान 40 डिग्री से ऊपर है तो हीट वेव है, और इसमें क्या होता है शरीर का तापमान जो है एकदम से बढ़ जाता है, और अगर ये 102 डिग्री तक हो जाता है तो हीट क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। हीट क्रैम्प्स का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, तापमान की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन बन जाता है, और उस डिहाइड्रेशन की वजह से चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, अगर वो बाहर धूप में रहते हैं या वो अधिक मेहनत कर रहे हैं या खेल कूद रहे हैं या मजदूर है जो अपने काम पर गया हुआ है, तो अचानक से उसको फेंट हो जाना, चक्कर आके गिर जाना, या फिर उसको शरीर में स्वेलिंग आ जाना, इस तरह के लक्षण उसको आ जाते हैं। इससे भी अधिक खतरनाक स्थिति जब बनती है जब तापमान जो है एकदम तेजी से बढ़ जाता है, तो अगर ये तापमान 45 डिग्री से ज्यादा हो जाता है और बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है और सारा उसके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उस पसीने में बाहर निकल जाते हैं, और अगर ये पानी इतना फ्रिक्वेंटली या इलेक्ट्रोलाइट्स वापस नहीं पिए जाए तो वो तेजी से उसको हीट एग्जॉशन हो जाता है, और उस हीट एग्जॉशन की स्थिति में क्या होता है कि उसको जो है चक्कर आने लग जाते हैं, सर में दर्द होने लग जाता है, उसकी मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है और उल्टियां वगैरह आने लग जाती हैं, और कई बार वो बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसको हीट स्ट्रोक हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, जिसमें अगर शरीर का तापमान अगर तेजी से 104 से 106 डिग्री तक बहुत कम टाइम में बढ़ जाएगा, 10-15 मिनट में ही बढ़ जाता है,
1: जी,
2: तो ये एक बहुत

0: खतरनाक स्थिति बन जाती है और उसमें वो कोमा में जा सकता है वो मनुष्य, और उसको कंफ्यूजन हो सकता है या फिर उसको दौड़े आने लग जाती हैं। तो इस स्थिति को हीट स्ट्रोक कहा जाता है और ये जो है जानलेवा भी साबित हो जाती
1: है। हो सकता है जो आजकल चर्चा में है और जिसकी काफी चर्चा हो रही है, हालांकि कहा यही जा रहा है कि भाई सावधानी बरते अपने जो दिन प्रतिदिन के काम है, रूटीन काम है, सुबह शाम में कर लें, घर से बाहर आपको जाना ही है, एहतियात बरते। तो अब बात यही है कि आपने दो तीन चीजें तो बताई कि भाई सामान्यतः 40 तक है, उसके ऊपर जब जा रहा है तो हम हीट वेव जैसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, 45 से ऊपर जा रहा है तो फिर वहां हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियां जनरेट होंगी, और जब अचानक बढ़ रहा है अपने शरीर का तापमान तो फिर जो है सावधान होने की जरूरत है। कुछ लक्षण भी आपने बताए किस तरह की अगर समस्या है तो हम जो है उसमें एहतियात बरते। अब इसको थोड़ा सा हम विस्तार में चलते हैं और अपने घर के आसपास के वातावरण से, घर की उससे, अपनी जीवन शैली से, व्यवहार से करते हैं। तो एक व्यक्ति को रोजाना काम करने तो निकलना ही होता है, कामकाजी हमारा जीवन है, चाहे सामाजिक तौर पे जाए या कोई मजदूरी कर रहा है या कोई ऑफिस जा रहा है उसमें, तो अब एहतियात, क्योंकि हम इलाज की बात करें उससे पहली बात कर लेते हैं कि हम कुछ बचाव हम करें, तो किस तरह का जीवन जीना चाहिए, इसमें खान पान की क्या सावधानी रखें, व्यवहारगत क्या रखें, निकलना तो है लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हमें कर लेंगे तो शायद बचाव हो सकता है।
0: ये बहुत जरूरी है क्योंकि मौसम के खराब होने से काम तो नहीं रुकता, जिंदगी चलती रहती है और सभी को अपना कार्य करना होता है, तो उसमें बस सावधानी हमेशा उसमें ये रखनी है कि पहले तो ये देखें कि आप जो है कोशिश तो यही करें कि आप दोपहर में 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक कम से कम आप कोई मेहनत वाला काम जो अगर करने जा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप उसको सुबह शाम के उस पे कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको अगर जाना बहुत जरूरी है तो आपको हमेशा जो है ये देखना चाहिए कि अपने साथ में पानी की बॉटल लेके जाएं, कुछ ORS के आप पैकेट्स अपने साथ में लेके जा सकते हैं, धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग करें, कैप का या हैट का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप जो है साफी अपना सिर पे अंगूठा लपेट के जा सकते हैं, और पैरों में हमेशा चप्पल जूते पहन के रहें, और कपड़े आप ऐसे हल्के रंग के पहने, साथ में उनको सूती कपड़े, ढीले कपड़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि हवा का आदान प्रदान उसमें से हो सके, और अगर हर 3-4 मतलब हर घंटे आप पानी पीते रहें जिससे कि आपके अंदर पानी की कमी ना हो,
1: एक पानी की बोतल हो उसमें एक आध नींबू अपने साथ रख सकते हैं, तो कुछ थोड़ा सा जैसे आपने घोल की बात की जिसमें आपने शुरुआत में कह रही थी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जैसे
0: बना सकते हैं आप, बाजार में तो मिलते ही है ORS के पैकेट्स मिलते हैं, आप इसको घर पर भी आप बना सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है तो उसमें आपको बस क्या करना है कि 1 लीटर आप साफ पानी आपको लेना है और उसमें आपको आधी चम्मच यानी कि 3.5 ग्राम करीब का नमक उसमें डालना है और साथ में आपको उसमें 4 चम्मच यदि 40 ग्राम की चीनी डालनी है तो अब उसको घोल लीजिएगा और उसको आप पी सकते हैं।
1: मतलब 1 लीटर में 3.5 ग्राम नमक डालने, 40 ग्राम के करीब जो है
0: चीनी डाल लीजिए,
1: वो
0: लाइफ सेविंग हो सकता है, उसको आपको बाजार से खरीदने की भी जरूरत नहीं है, तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। आज ज्यादातर देखा जाता है कि बच्चों को डायरिया वगैरह भी हो जाता है और बड़ों को भी हो जाता है गर्मी के टाइम में, तो एक ये आप सावधानी उसमें कर सकते हैं। इसके साथ में ये देखिए कि आप बाजार में आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैसे लोगों का ज्यादा देखने में आया है कि कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीने लग जाते हैं, तो मेरी सलाह यही है कि कोल्ड ड्रिंक्स ना पी करके वो लस्सी, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी या फ्रेश जूस ये ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: जो प्राकृतिक है,
0: प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक, ज्यादा चाय या ज्यादा कॉफी के सेवन से उनको डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा उनका उस चीज में। साथ ही ये देखें कि बाजार में मिलने वाले या कोई बासी खाने का उपयोग ना करें, बाजार की चीजें ना करके घर का फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो खाना होता है उसका इस्तेमाल करें। इस समय मौसमी फल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसमें पानी प्रचुर मात्रा में रहता है।
1: जी जी,
0: तो ऐसा नहीं है, प्रकृति ने जो है अगर
1: गर्मी दी है तो कुछ प्राकृतिक वो भी दिए हैं, तरबूज है,
0: रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं, तो वो कर सकते हैं। आप अपने घर में पर्दे वगैरह लगा के रखिएगा जैसे डायरेक्ट धूप आती है तो, और अपने जो है जो आपके पालतू जानवर है उनको भी आप शेड में रखिए, उनको पीने के लिए पानी दीजिए, छोटे बच्चों को या आपके जो पालतू जानवर है उनको आप किसी भी गाड़ी में, खड़ी हुई गाड़ी में कम से कम ना छोड़ें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है गर्मी के मौसम में।

0: है। तो ऐसी बहुत सारी सावधानियां हैं जिनको अगर मनुष्य आम जीवन में इस्तेमाल करे तो इस गर्मी के मौसम में भी अपनी जिंदगी को वो
1: कुछ यात्रा पे जैसे निकलने, कई बार भाई हमें एक दो दिन की यात्रा करने जाता है सामाजिक कार्यों से जाना ही पड़ता है
0: जी
1: भाई। एक तो ये है कि हम घर से बाहर निकले, एक अपना काम करके शहर से शहर वापस आ गए, लेकिन एक बार ये कई बार यात्रा भी करनी पड़ती है। तो वहां कुछ एहतियात है, जैसे आप कह रही कि भाई अपने पास कुछ घर का खाना
0: एहतियात
1: हो।
0: यही है कि घर
1: हाँ
0: का बना हुआ अपना खाना लें, और अगर कुछ नहीं है तो फल तो सब जगह
1: मिल ही रहे
0: मिल ही रहे
1: हैं।
0: हैं, तो
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: फल ले सकते हैं, फ्रेश
1: पानी
0: पी
1: का
0: सकते हैं,
1: मतलब
0: नारियल
1: सेवन।
0: पानी आप ले
1: हाँ
0: सकते हैं,
1: जी,
0: और अपना ORS का इस तरह का जो पाउडर आप ले जा सकते हैं, और उसको आप जो है साफ पानी में डाल करके उसको आप पीते रहिएगा
1: जी।
0: तो
1: कुछ
0: उससे
1: लोगों की आदत जैसे दिनचर्या में व्यायाम बहुत होता है,
0: जी
1: लेकिन आपने कहा कि समय मेहनत वाले काम न करें। तो अगर व्यायाम हमारे जीवन का हिस्सा है तो उसको थोड़ा देख ले कि एक ठंडे समय में ही कर
0: ठंडे
1: ले।
0: समय में करें, सुबह के समय जल्दी उठ के कर सकते हैं, या शाम को या रात को उसको व्यायाम को कर
1: तापमान
0: सकते
1: जब
0: हैं।
1: थोड़ा सा नीचे आ जाए,
0: तापमान नीचे, धूप में
1: धूप में न
0: ना
1: जाए,
0: करें,
1: धूप में
0: धूप
1: न
0: में
1: जाए।
0: ना जाएं।
1: हाँ कुछ जैसे बच्चे छोटे हैं, आपने हालांकि कहा
0: जी
1: कि डायरिया जैसी समस्याएं समय हो सकती हैं, इन लोगों के लिए कुछ अलग से एहतियात की तरफ का है ये कि जो छोटे बच्चा घर में कोई
0: छोटे बच्चे
1: न्यूली,
0: हैं
1: हाँ
0: और
1: बुजुर्ग हैं तो।
0: बहुत, आपने गर्मी के मौसम में वैसे भी बीमारियां जो है ज्यादा पनपती हैं, तो छोटे बच्चों में ज्यादातर देखने में आता है कि उनको मीजल्स हैं, मम्स हैं, चिकन पॉक्स है, डायरिया है, फूड पॉइजनिंग है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो गर्मी के मौसम में ज्यादा होने के उनके संभावना रहती है। तो सावधानी उसमें यही रखनी है कि जो भी खाना खा रहे हैं वो हाथ धो करके साबुन और पानी से अच्छे से हाथ धोएं, स्वच्छता का ध्यान रखें, बासी खाना बिल्कुल भी ना खाएं, और कोशिश ये करें कि घर का ही खाना खाएं, और छोटे बच्चों को भी, उनके माँ बाप हैं उनको पानी पीने के लिए उनको, या पानी नहीं पी रहे हैं तो उनको इस तरह की चीजें, नींबू पानी, शिकंजी, इस तरह की चीजें उनको जल्दी पिलाना चाहिए उनको। और कोई भी अगर इस तरह की जो मैंने बीमारियों का नाम लिया, इनके टीके भी उपलब्ध हैं, तो वो वैक्सीनेशन उनको उस बीमारियों के लिए करना चाहिए।
1: करना चाहिए इसमें। अब थोड़ा सा जो पहले से क्रिटिकल है, बहुत सारी बीमारियां ऐसे, बहुत से लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, डायबिटिक हैं, या और जो क्रिटिकल बीमारियां हैं, ये जो अब एक्सट्रीम मौसम हो रहा है, तो फिर उनके लिए कुछ अलग
0: जी
1: से।
0: बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको डायबिटीज है, जिनको मोटापा है, या इस तरह की जो है उनको मेटाबॉलिक डिसीजेज हैं, तो उनमें जो है हीट, गर्मियों के मौसम में वो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही कमजोर रहता
1: कमजोर
0: है,
1: रहता
0: तो
1: है।
0: उनमें ये जो इन बीमारियों का प्रभाव ज्यादा खतरनाक तरीके से होता है, क्योंकि इसमें हीट में क्या होता है कि फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। बॉडी का क्या काम है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना,
1: मेंटेन
0: अगर
1: रखना।
0: टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी ऑटोमेटिकली, उसको बॉडी को पसीना आता है और वो उसको ठंडा करती है बॉडी को, लेकिन ये जो हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्टन की जो स्थितियां होती हैं, इसमें बॉडी का जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है, यानी कि पसीना बिल्कुल नहीं आता, शरीर एकदम गर्म हो जाता है, या फिर पसीना इतना ज्यादा आता है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में, और अगर उसको डायबिटीज है, अगर कोई इन्फेक्शन है, उसका किडनी की प्रॉब्लम है, तो ये जो कंडीशन है ये एग्रेवेट बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीजों को बहुत ज्यादा इस चीज में सावधानी गर्मी के मौसम में रखनी चाहिए।
1: हाँ मतलब जो क्रिटिकल है वो अपने जो जिस डॉक्टर्स की सलाह में है, तो वो थोड़ा सा मान लो 15 दिन में जा रहे हैं, महीने भर में जा रहे हैं उनकी सलाह से, तो वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली
0: नहीं,
1: उनको,
0: कोशिश तो यही करनी चाहिए
1: हाँ कि
0: कि वो धूप
1: उनके
0: में
1: ना
0: ना जाए,
1: जाने दे।
0: ऐसी परिस्थितियां ना आने दे, सावधानी बहुत जरूरी है, इलाज से ज्यादा जरूरी सावधानी है, अपनी शुगर को कंट्रोल करें, दवाइयां अपना टाइम से लें।
1: तो बात एहतियात की है, बचाव की है, और अगर कंडीशन ऐसी आती है तो फिर आपके आसपास जो भी अच्छा डॉक्टर है उसे संपर्क करें। CSC PSC आपके आसपास हो सकते हैं, ग्रामीण इलाके में, वहां संपर्क कर सकते हैं। शासन प्रशासन ने काफी कुछ सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन जागरूक होना हमारे अपने विवेक पर निर्धारित करता है। तो ये जो गर्मी का मौसम है इसमें सावधानी रखें, ताजा भोजन करें, अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा ठंडा बना करके रखें, और डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई अगर उन पे आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे इनसे हमको लाभ मिल सकता है। डॉक्टर साहब आप आई और जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम। विषय था लू एवं हीट स्ट्रोक, सावधानी और बचाव। विशेषज्ञ थी डॉक्टर भारती गर्ग, आपसे भेंट कर रहे थे OP सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आप सुनिए बदायूं और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों हरदोई में आयोजित कार्यक्रम में मेरठ से प्रयागराज तक बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं बदायूं जिले के खटपुरी बिनावर इंटरचेंज के समीप आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा व जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बदायूं के विकास में गंगा एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। हरदोई में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बदायूं में दिखाया गया, जिसे जनप्रतिनिधियों व आमजन ने देखा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिले से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक कुल 12 जिलों से गुजरने वाला 594 किलोमीटर लंबा है। बदायूं में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि आजादी के बाद से जितने विकास कार्य 60 सालों में नहीं हुए, उससे ज्यादा विकास कार्य डबल इंजन की सरकार में हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में विभिन्न एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर, अन्य विकास कार्य हुए हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में 2,70,00,000 दीदियाँ लखपति हैं। अब प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की 6 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे बन जाने से लखनऊ व दिल्ली की दूरी कम हुई है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे बन जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी कम हुई है। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, किसानों को लाभ होगा व आमजन को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो कहती है वो पूरा करके दिखाती है। बदायूं में इस एक्सप्रेस वे के समीप 2 औद्योगिक पार्क गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। इससे रोजगार सृजन होगा और युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने आकाशवाणी को बताया,
3: ये गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा, जिसमें 12 जनपद जिले से जुड़ रहे हैं। और बदायूं की विशेषता ये 21 इंटरचेंज है, उनमें से हमको 3 इंटरचेंज मिले।
2: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयवीर सिंह व केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों ने बीते दिनों बदायूं जिले के कछला गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर अवस्थापना व विकास कार्य तथा बेहतर कनेक्टिविटी देने का कार्य किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग देश की सांस्कृतिक व पौराणिक धरोहरों को विकसित व संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वयं गणना अवधि दिवस पर जिलाधिकारी अवनीश राय द्वारा कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट अपने कार्यालय कक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने अपने आवास से स्वयं गणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर जनपद वासियों को जनगणना अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि हम सभी भारत की जनगणना 2027 में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा राष्ट्र निर्माण एवं समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक होगी। जनगणना के शुरू होने से 15 दिन पूर्व यानी कि 7 मई से 21 मई तक स्वयं गणना करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। लोग स्वयं अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से घर बैठे जनगणना की पूरी जानकारी भर सकेंगे। स्वयं गणना देश में पहली बार हो रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक आसान, तेज एवं पारदर्शी रहेगी। स्वयं गणना करने वाले लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से जुड़ी समस्त जानकारी खुद भर सकेंगे। सुरक्षित करने पर 11 अंकों की एक स्वयं गणना पहचान संख्या SI ID जारी होगी, जिसे सुरक्षित नोट कर रखें। स्वयं गणना के बाद 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रांगण घर घर जाकर जनगणना करेंगे। जिन्होंने पहले ही स्वयं गणना कर ली है उन्हें अपने 11 अंकों की SI ID बतानी होगी। बदायूं जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल, संतुलित आहार और संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। योजना के अंतर्गत अप्रैल 2017 से दिसंबर 2025 तक बदायूं में कुल 13,799 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किया गया। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को पहली किस्त गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में पंजीकरण के बाद, दूसरी किस्त प्रसव पूर्व जांच टीकाकरण के उपरांत और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद आवश्यक टीकाकरण पूर्ण होने पर प्रदान की जाती है। इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक संबल मिलता है, बल्कि वे नियमित स्वास्थ्य एवं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से

0: भी जुड़ती हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशों के क्रम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में परिषदीय उच्च प्राथमिक सविलियन विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण का सजीव प्रसारण बदायूं के अटल बिहारी सभागार में किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा, प्रदेश के राज्य मंत्री अरुण कुमार और जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े मानदेय का चेक और प्रतीक चिन्ह देकर अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया गया।
1: बदायूं जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का।
2: उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के विकास भवन सभागार में अनुदेशक सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण के शुभारंभ हेतु एक भव्य जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान लोक भवन सभागार लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। शासन द्वारा अनुदेशकों के मानदेय को 9,000 रूपए से बढ़ाकर 17,000 रूपया प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। जनपद स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अंतुल तेवतिया ने अनुदेशकों को बधाई देते हुए कहा कि मानदेय में यह वृद्धि केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह अनुदेशकों के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत का सच्चा सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में व्यापक और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। बुलंदशहर में जिला पंचायत सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता सांसद भोला सिंह ने की। बैठक के दौरान जनपद में संचालित केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद भोला सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बुलंद शहर में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ स्टेयरिंग ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा बैठक में उपस्थित जनपद के समस्त अधिकारियों को अपनी अपनी बाढ़ कार्य योजना को अतिशीघ्र तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुलंद शहर को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियंता सिंचाई नोडल अधिकारी बाढ़ को समस्त परियोजनाओं को समय पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही उप जिलाधिकारी शाना, नोडल अधिकारी डिबाई व अनुप शहर को समस्त नाविक गोताखोरों के साथ तहसील स्तर पर बैठक आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे संभावित बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों में कोई कमी ना रह सके। बीते दिनों बुलंदशहर में भाजपा जिला कार्यालय पर महिला जन आक्रोश अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जहां महिला जन आक्रोश अभियान के माध्यम से नारी शक्ति के सम्मान, अधिकार एवं जागरूकता के विषयों पर विचार विमर्श किया गया, वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति से ही राष्ट्र का सम्मान है। बुलंदशहर जिले में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशों के क्रम में गौशालाओं के नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दूसरे दिन 41 गौआश्रय स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों को गर्मी से बचाव हेतु जूट के बोरे टांगने की गई व्यवस्थाओं एवं स्वस्थ पीने के पानी, हरा चारा, भूसा, सीसीटीवी क्रियाशील आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। डीएम ने बताया कि गौ आश्रय स्थलों में लगभग 14,302 कुंतल भूसा दान एवं क्रय से संग्रह किया गया है। उन्होंने कहा, निरीक्षण में पाई गई कमियों का तत्काल निराकरण कराया जाएगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा। आजकल गर्मी का सितम जारी है, ऐसे में जनजीवन भी हीट वेव की वजह से प्रभावित हो रहा है। वेटनरी विभाग के प्रोविजनल ऑफिसर पवित्रजीत सिंह ने बताया कि गर्मी के सीजन में पशुपालकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हीट वेव से पशुओं को बचाने के लिए पशुपालक क्या करें।
3: आप जहाँ पर पशु को बांध रहे हैं वहाँ पर आधा घंटे के लिए आप वहाँ रुकें। अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल हैं तो समझ लीजिए कि आपका पशु भी वहाँ पर कंफर्टेबल। अगर आप वहाँ गर्मी महसूस कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और वो जगह को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तुरंत उठे वहाँ से चाह रहे हैं, समझिए कि आपका पशु भी वही चाह रहा है। सवेरे शाम नहलाएं, पर्याप्त मात्रा में ठंडा साफ ताजा पानी देने के लिए हरा चारा दें और हरे चारे को देते वक्त ये ध्यान रखें कि वो सूखे हुए खेत से ना हो। पर्याप्त सिंचाई किया हुआ खेत ही हो जहाँ से वो चारा लाया गया।
2: बीते दिनों बुलंदशहर जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने जिलाधिकारी कुमार हर्ष, सीडीओ सुश्री निशा ग्रेवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जनपद में संचालित सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं, विकास कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाई गई समस्याओं के निस्तारण हेतु भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
5: श्रोताओं, मनुष्य जीवन के लिए वायु के बाद सबसे आवश्यक चीज जल है। सामान्यतया एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 4 से 5 लीटर जल की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की संरचना में भी 65% जल ही होता है। हमारे जीवन में जल का मुख्य इस्तेमाल पीने के अलावा खाना बनाने, नहाने धोने, साफ सफाई, सिंचाई करने, भवन निर्माण तथा उद्योगों में बहुतायत होता है और यहाँ तक कि विद्युत निर्माण में भी जल की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, पृथ्वी के 70% भूभाग पर अथाह समुद्र के रूप में जल मिलने के बावजूद भी जल अत्यंत सीमित है। आप पूछेंगे कैसे? जी हाँ, क्योंकि कुल उपलब्ध जल का 1% से भी कम जल सतही जल है और वह भी लगभग 70% प्रदूषित हो चुका है। मनुष्य में जिंदा रहने के लिए प्रतिवर्ष 1 घन मीटर जल चाहिए, जबकि अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए 30 घन मीटर जल प्रतिवर्ष चाहिए। संपूर्ण विश्व में कुल जल खपत का 72% कृषि कार्यों में, 21% उद्योगों में तथा शेष 7% जल पीने व घरेलू कार्यों में काम आता है। उपयोग का यह अनुपात अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। जिस तरह से जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, सिंचाई, पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण बढ़ता जा रहा है, जल की खपत भी बढ़ती जा रही है। जहां एक ओर जल की मात्रा अत्यधिक सीमित है, वहीं दूसरी ओर जल की खपत निरंतर बढ़ती जा रही है, तो जल संकट की उत्पत्ति स्वाभाविक है। जल का प्रमुख उपयोग पीने का पानी ही है। गर्म देशों जैसे भारत, अमेरिका, चीन, मैक्सिको, कनाडा, जापान, श्रीलंका, पाकिस्तान इत्यादि में पेयजल की खपत अपेक्षाकृत अधिक ही होती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व के 25% व्यक्तियों के लिए पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। भारत में 30% से भी अधिक लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। इस वजह से हेजा, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, पेचिश, गैस्ट्रोएंटाइटिस, पीलिया, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ड्रेकोमा, थेलोफिस्ट, लिशमेनेसिस जैसे रोगों के कारण प्रतिवर्ष 50 लाख व्यक्ति मौत के शिकार हो जाते हैं। नदी, नालों व कुओं के जल के प्रदूषित होने के साथ ही अब तो भूगर्भीय जल भी प्रदूषित होने लगा है। सतही पानी के दोहन के उपरांत अब भूगर्भीय जल का दोहन भी अत्यधिक होने लगा है, जिससे भूगर्भ के जल स्तर में भी निरंतर गिरावट आ रही है और कुएं, बावड़ी, हैंडपंप, ट्यूबवेल इत्यादि सूखने लगे हैं। ये जल संकट आज छोटे गांवों में इतनी अधिक मात्रा में है, धीरे धीरे ही बढ़ता हुआ हमारे शहरों की तरफ आ जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना का भी व्यापक प्रभाव नहीं देखा गया। अभी भी यदि बढ़ती जल खपत एवं बढ़ते जल प्रदूषण की ओर दूरदर्शिता से ध्यान देकर गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो निकट भविष्य में संपूर्ण विश्व में जल संकट के कारण त्राही त्राही मच जाएगी। आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व नहीं, बल्कि एक व्यक्ति पानी की बचत कर सकता है, वो है हम स्वयं। जी हाँ, शुरुआत हम हमारे स्वयं से करें, पानी की बचत करें तो पूरा विश्व पानी के संकट से उबर सकता है।

और वाचन स्वर था निषेध सोनी का। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं गांधी चर्चा। विषय है अस्पृश्यता और प्रस्तुति है सत्यव्रत सिंह की।

एक जगह बापू ने यंग इंडिया में अपने संस्मरणों में हम और हमारा कलंक नाम से एक कॉलम दिया। उसमें वो लिखते हैं कि उड़ीसा के दौरे के लिए मैं काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था, लेकिन बहुत दिनों से मुलतवी चला आ रहा था, और जब उसका अवसर आया भी तो मेरे संताप और मेरी जिल्लत को बेहद बढ़ा देने के लिए ही। नज़दीक से नज़दीक के रेलवे स्टेशन से 31 मील दूर बोलगढ़ में मैं 11 तारीख को दीन बंधु एंड्रयूज़ के साथ बैठा बातें कर रहा था। उसी समय सिर्फ एक मैली सी लंगोटी पहरे कमर झुकाए एक आदमी झुकता हुआ मेरे सामने आया। उसने जमीन से एक तनका उठाकर मुंह में डाल लिया और मेरे आगे साष्टांग लौट गया। फिर उठकर उसने प्रणाम किया, तिनका निकालकर बालों में खोंस लिया और जाने लगा। यह दृश्य देखते हुए मैं पीड़ा से तड़प रहा था। यह खत्म होते ही मैंने किसी दुभाषीय को चीख कर पुकारा और इस भाई को बुलाकर बातें करने लगा। वह बेचारा अछूत था, बोलगढ़ से 6 मील पर रहता था, बोलगढ़ में लकड़ी बेचने आया था। वहां आने पर मेरे बारे में सुनकर मुझे देखने चला आया। मेरे पूछने पर कि मुंह में तिनका क्यों लिया था, उसने कहा, आपका आदर करने के लिए। शर्म से मैंने सिर झुका लिया। इस आदर की कीमत मुझे बहुत भारी और असह्य जान पड़ी। मेरी हिंदू भावना को गहरी ठेस लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ दोगे? वह बेचारा एक पैसे के लिए कमर टटोलने लगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, पर मैं इससे भी अच्छी चीज मांगता हूँ। उसने कहा, मैं दूंगा। मैंने उससे पूछ लिया था कि वह शराब पीता था, मुर्दार मांस खाता था, क्योंकि वह तो उसका रिवाज था। मैं तुमसे ये मांगता हूँ कि तुम जवान दो कि दुनिया में किसी आदमी के लिए आगे से मुँह में तिनका नहीं दोगे। यह आदमी के आत्मसम्मान के लायक नहीं है। फिर कभी शराब नहीं पियोगे, क्योंकि वह आदमी को पशु बना देती है। मुर्दार मांस नहीं खाओगे, क्योंकि यह धर्म विरुद्ध है और कोई भी सभ्य आदमी कभी मुर्दार मांस को नहीं खाता। उस गरीब ने जवाब दिया, अगर मैं शराब न पीऊं और मुर्दार मांस न खाऊं तो बिरादरी वाले मुझे अपनी बिरादरी से निकाल देंगे। जब जात पात से बाहर होने की तकलीफ सहो और जरूरत पड़े तो गांव को छोड़ देना। इस पदलित गरीब आदमी ने वचन दे दिया, अगर वह अपनी बात पर कायम रहा हो तो उसकी यह भेंट मेरे धनी देशवासियों के लिए धन से कहीं ज्यादा मूल्यवान होगी। यह अस्पृश्यता हमारा सबसे बड़ा कलंक है। इसकी जलालत दिनों दिन बढ़ती जाती है। मगर यह अविस्मरणीय घटना तो उस भारी शर्म और दुख का एक अंश भर थी। चंपारण के बाद मैंने फिर कभी यह मृत्यु जैसा सन्नाटा नहीं देखा था जो वाणपुर के जरिए उड़ीसा में प्रवेश करने पर मैंने देखा है। शायद उड़ीसा की शांति चंपारण की शांति से भी बुरी है। वहां के किसानों के बीच थोड़े ही दिनों तक रहने के बाद उनमें उत्साह आ गया, मगर उड़ीसा में इतनी जल्दी उत्साह आने में मुझे शंका है। मुझे बताया गया है कि जमींदारों, राजाओं, स्थानीय पुलिस ने किसानों को मेरे पास आने से बहुत डरा दिया है। मैं तो इस विश्वास में फूला हुआ था कि अब जमींदारों, राजाओं और छोटे से छोटे पुलिस अफसर से मुझे डरना छोड़ दिया है, मगर यहाँ आकर मेरा ख्याल बदला है। कमजोरी के कारण, खुद इधर उधर घूमने में असमर्थ होने के कारण मैंने मित्रों के लोगों के बीच भेजा और उसके कारण का पता लगाया। वे लोग ये खबर लाए कि लोगों को कहा गया है कि गांधी जी के पास मत जाओ, उनके सम्मान में किए गए किसी समारोह में शामिल मत हो, नहीं तो सजा मिलेगी। ऐसी सूचनाएं दूसरे प्रांतों में भी दी गई हैं, मगर ऐसे साधारण दिनों में उनकी कहीं कोई असर नहीं पड़ी है। उड़ीसा के किसान ऐसे मालूम पड़े जो सदा भयभीत रहते हैं और इसलिए उन्हें सहज ही विचलित किया जा सकता है। यह ऐसा कलंक है जो हमारे और हमारे विदेशी शासकों दोनों के माथे पर है। यह सच है कि राजा और जमींदार, पुलिस के छुटभैये सभी हमारे अपने ही भाई और अपने ही

हार्ड मास के हैं, मगर ये भय के डर के मूल कारण तो हमारे शासक हैं। उनके शासन का आधार ही भय है। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के नाम पर हमारे बड़ों से बड़े लोगों को भी किसी न किसी तरह झुकने पर लाचार किया ही है। जहां तक बस्ती पहले ही मौजूद थी, वहां उसे उन्होंने और बढ़ाया है। उन्हें किसानों में ज्यादा इस घृणित भय की मौजूदगी का पता था, मगर जहां कहीं भी उन्होंने अपने राज्य के हित के नाम पर उसे और उसके कारणों को अपनी छाती से नहीं लगाया, वहां उसे दूर करने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया। इसीलिए वे इन दुख दृश्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी भले ही नहीं हों, तो भी इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। इस इल्जाम से तो वे बरी नहीं हो सकते। मगर हमारा कलंक तो और भी बड़ा है। अगर हम सबल, स्वाभिमानी और निडर होते, तो फिर विदेशी शासक कुछ बुराई कर ही नहीं सकते थे। जो लोग डरपोक होते हैं, वे दूसरों से डरते रहते हैं। और इसे कबूल करना ही होगा कि अंग्रेजों के आने के बहुत दिन पहले से हम अपने जमींदारों और राजाओं से डरने के आदि थे। वर्तमान शासकों ने तो सिर्फ उसी को एक विधिवत शास्त्र सा बना लिया है, जो पहले भी न्यायाधिक स्थूल के रूप में मौजूद था। इसीलिए उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को लोगों को सिखलाना है कि इस भीरुता को, जो करीब करीब कायरता ही है, छोड़ दो। इस प्रकार बापू ने अपने संस्मरण में स्पष्ट किया है कि सम्यक सामाजिक विकास के लिए जरूरी है कि हमारे समाज में एकरूपता और भाईचारा होना ही चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में अपने समाज का विकास कर सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, विषय था अस्पृश्यता और प्रस्तुति थी सत्यव्रत सिंह की। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: एम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं वार्ता। डिजी लॉकर, आज की आवश्यकता। आलेख अमृतांशु मिश्रा का है और वाचन स्वर है देवराज कृष्ण दीक्षित का।
1: आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा नित नए आविष्कार किए जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का विकास तकनीकों की उन्नति पर सीधे रूप से निर्भर होता है। किसी भी देश का विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विकसित होना उस देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सहयोग देता है। अगर कोई देश वर्तमान तकनीकों को विकसित करने में आगे कदम नहीं बढ़ाता तो वो अन्य देशों के मुकाबले पिछड़ जाता है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को उन्नत करके वहां के देशवासियों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए नए शोध, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और इंजीनियरिंग एक अति आवश्यक क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में निरंतर विकास करने से किसी भी देश की प्रगति निश्चित होती है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को विशेष रूप से प्रभावित किया है, जिस वजह से देशवासियों का जीवन सरल, आसान और तेज करने में सफलता प्राप्त की है। प्राचीन समय में मानव को हर काम करने के लिए काफी समय खर्च करना पड़ता था। छोटे छोटे काम करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और दूसरे लोगों पर निर्भर रहना होता था। किंतु औद्योगिकीकरण व नित नए आविष्कारों की वजह से आज घंटों का काम मिनटों में करना संभव हो सका है, जिससे समय की बचत के साथ आवश्यक शारीरिक मेहनत व लंबी दूरी तय करने की समस्या से भी निजात मिली है। विकसित प्रौद्योगिकी व तकनीकों की वजह से आम जनमानस की जीवन शैली में भी आधुनिकता का समावेश हुआ और महत्वपूर्ण सुधार आया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को तकनीकी रूप से समृद्ध करने के लिए भारत सरकार के एक नए कार्यक्रम की नींव रखी, जिसे डिजिटल इंडिया का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में अधिकतर कार्य टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा किए जाने पर जोर दिया गया। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले बैंकिंग क्षेत्र, मार्केटिंग व अन्य सरकारी बिलों के लेन देन को सरल व आसान बनाने की पहल की गई। इसके लिए इन क्षेत्रों का डिजिटलाइजेशन किए जाने की शुरुआत की गई। पहले जहां भारत के लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, वहीं अब गांवों से लेकर शहरों तक लोगों को बिजली का बिल, पानी का बिल, एलपीजी गैस सिलेंडर का बिल जैसे आवश्यक कार्यों को वो मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से कर पाने में सक्षम हो गए। मोबाइल लैपटॉप की मदद से घर पर बैठे बैठे पैसों का लेन देन करने में सुरक्षित व आसानी महसूस कर रहे हैं। ये सब संभव हो पाया डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम के कारण। इस कार्यक्रम की सफलता से भारत में ई कॉमर्स का व्यवसाय हर साल 50% की तेजी से बढ़ रहा है। आज कपड़ों से लेकर दवाइयां, मसाले, सब्जियां, फल व इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑनलाइन घर बैठे बैठे सुगमता से मंगवा रहे हैं। इस कार्यक्रम से कागजी कार्यवाही को कम करने में व कार्य कुशलता में सुधार लाने में विशेष सफलता हासिल की है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सुविधाओं आदि अन्य क्षेत्रों को डिजिटल किया गया है। इसके साथ ही भारतीय नागरिकों का सभी डाटा आधार कार्ड से जोड़ने का कार्य भी प्रारंभ किया गया है, जिससे सभी देशवासी आधार कार्ड के जरिए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। डिजिटल इंडिया के अनेक कार्यक्रमों की सफलता के साथ इसी कड़ी में सरकार ने कुछ समय पहले डिजी लॉकर नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका उपयोग हम अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। डिजी लॉकर भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया मिशन की

एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे इसकी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें दिखा सकते हैं। अब से भारत सरकार ने सॉफ्ट कॉपी को भी उतनी मान्यता प्रदान की है जितनी एक हार्ड कॉपी को दी जाती है। अब आपका पहचान पत्र, ट्रेन की टिकट व अन्य जरूरी दस्तावेज आपके पर्स में हो या मोबाइल में, दोनों एक ही बात है। इन्हें अपने मोबाइल में दिखाकर आप अपने कार्य सुगमता से कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको डिजी लॉकर की सुरक्षा की चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उतना ही सुरक्षित है जितना कि हमारा बैंक खाता या नेट बैंकिंग। डिजी लॉकर को चालू करने से पहले हमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है और उसे अपने आधार कार्ड से लिंक करना होता है। साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करना होता है। ये सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद वहां कुछ स्पेस मिल जाता है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग फाइल में रख सकते हैं, जैसे इमेज, पीडीएफ, वर्ड फाइल इत्यादि। अपने दस्तावेज को इस अकाउंट में सेव करने के लिए आपको उन सभी दस्तावेजों की एक फोटो क्लिक करनी होगी, फिर उनको आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अपने दस्तावेज के लिए अलग अलग फोल्डर भी बना सकते हैं, जैसे कॉलेज के नाम से फोल्डर में अपने स्कूल कॉलेज की सारी मार्कशीट व सर्टिफिकेट सेव कर सकते हैं। घर की रजिस्ट्री के कागज आप दूसरे फोल्डर में सेव कर सकते हैं। जब कभी भी आपको डिजी लॉकर से अपना कोई सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना हो तो अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस कोड को लॉगिन करने के बाद डालना पड़ेगा, तभी आप अपने सर्टिफिकेट और दस्तावेज देख पाएंगे। डिजी लॉकर की विशेषता ये है कि जो जरूरी कागजात समय के साथ पीले पड़ जाते हैं, फट जाते हैं या फिर दीमक खा जाती है, वो इसमें कभी खराब नहीं होते। इसमें सेव दस्तावेज को आप दुनिया के किसी भी कोने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपके मोबाइल में इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए। डिजी लॉकर को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार संपूर्ण देश में पेपरलेस सिस्टम विकसित करना चाहती है। जिन एजेंसियों के बीच अधिक मात्रा में दस्तावेज का आदान प्रदान होता है, उसे सक्षम बनाना व बड़े बड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखना भी संभव हो सका है। जब कभी हम गाड़ी चला रहे होते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस घर में भूल जाते हैं, तो डिजी लॉकर में सेव दस्तावेज दिखाकर हम किसी मुश्किल में पड़ने से बच सकते हैं। डिजी लॉकर सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में मान्य है और कोई भी इसको मानने से इनकार नहीं कर सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद हमें किसी सरकारी ऑफिस में दस्तावेजों की फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं है। ये परियोजना जहां एक ओर यात्रा लागत को तो कम कर ही रही है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी बचा रही है, क्योंकि कागजों को बचाकर हम पेड़ों को बचा रहे हैं, अतः ये पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार है। श्रोताओं, अब प्रश्न ये उठता है कि डिजी लॉकर में सेव सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में साइबर सुरक्षा का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारा डाटा किसी अनाधिकृत व्यक्ति के पास उपलब्ध हो जाए तो वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। इस काम को करने के लिए कई बार साइबर अपराधी लिंक, ईमेल और डाउनलोड साइट का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करता है तो ये हमारे सिस्टम के लिए घातक साबित हो सकता है। इसी प्रकार नकली वेब पेज की सहायता से भी अपराधी कुछ निजी जानकारियां हासिल करने में सफल हो जाते हैं और नेटवर्क से जुड़े दो व्यक्तियों के बीच हो रहे डाटा ट्रांसफर को भी चुराया जा सकता है। इन सभी से बचने के लिए हमें डिजिटल लेन देन या इंटरनेट चलाते समय कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जो अति आवश्यक हैं। जैसे हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना,
इंटरनेट का प्रयोग करते समय किसी गलत

0: साइट पर जाकर किसी फाइल या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड न करना, अपने सिस्टम और स्पेशल अकाउंट का पासवर्ड हमेशा यूनिक और स्पेशल बनाना, सरल पासवर्ड कभी न बनाएं और समय समय पर उसे बदलते रहें। डिजिटल बैंकिंग के उपयोग के सुरक्षित तरीकों को समझना और जागरूक रहना भी आवश्यक है। किसी भी दशा में फोन से या अन्य किसी साधन से अपने अकाउंट की जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। इतना ही नहीं, अपने निजी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड के विषय में किसी को भी जानकारी नहीं देनी चाहिए। अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हमें खुद को इस बारे में सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता डिजी लॉकर आज की आवश्यकता, आलेख अमृतांशु मिश्रा और वाचन स्वर था देवराज कृष्ण दीक्षित का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं चंदनदास की गाई यह गजल।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है, इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई, अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षा वन नहीं है।
0: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं वर्षा वन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
2: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए

0: बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ जी जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है।
1: जी बिमरेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आ जाओ, आओ। हाँ।

0: देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो क्या क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
1: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
0: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान न होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उन्हें दें।
1: शायद आप ठीक कहते हैं, ये हमारे बच्चे ही हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
2: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
3: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
1: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि इस सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
0: हाँ ये तो है।
1: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
0: सही कहा।
1: और हाँ पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
0: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
0: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: जी सुनिए।
0: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
0: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
4: हाँ।
0: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे इसको भी डालो।
0: हाँ हाँ ये देखो देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया ना।
4: प्यारा लग रहा है।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
0: देखा थिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
0: हाँ।
4: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
0: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
5: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
6: ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे हमारा शहर हो।
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के

0: काम को शुरू किया था, उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का, होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
2: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
3: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार। कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश। बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को यानी कि आज दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 25 30 135 फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा, पिन कोड 281003। एक बार पुनः पिन कोड 281003। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

सुना उदित नारायण, अलका याग्निक, सपना अवस्थी को फिल्म राजा हिंदुस्तानी में, और आइए सुनते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन में, स्वर है अभिजीत सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल का।

राधा पौडवाल, कुमार सानू को अभी आपने सुना फिल्म आशिकी में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और बाबला मेहता को, फिल्म का नाम है चांदनी।

0: लता मंगेशकर कुमार सानू के गाए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के संगीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति संजय सारस्वत की है।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो।
1: हाँ सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं जबलपुर एमपी से आपका जाना पहचाना श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ।
0: अशोक जी, कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका।
1: धन्यवाद सर जी। सारस्वत जी कैसे हैं आप, आपका परिवार?
0: सब लोग अच्छे हैं सर, आप बताइए, आपके यहाँ सब ठीक हैं?
1: सब ठीक है सर? नहीं ठीक है तो क्या, गर्मी का मजा ले रहे हैं, गर्मी में ठंडा बर्फ
0: हाँ, हर मौसम का अपना अलग मजा है, लेकिन सावधानी भी जरूरी होती है हर मौसम में।
1: जी सर
0: जी, दोपहर के वक्त घर से कम निकलना उचित रहता है।
1: जी सर
0: आज बताइए अशोक जी, कार्यक्रम में क्या फरमाइश है?
1: आज सुना दीजिए अपनापन का। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन।
0: बिल्कुल, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी सर,
0: नमस्कार।
1: आपको मेरा सादर नमस्कार। सर मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र महेश चंद सदर बाजार से।
0: बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका महेश जी।
1: और सर आप कैसे हैं सर?
0: बहुत बढ़िया है।
1: हाँ सर, गर्मी ज्यादा ही पड़ रही है कुछ
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: गर्मी है सर, बच के रहना
1: हाँ
0: जरूरी है दोपहर के समय तो खास तौर पे।
1: हाँ जी, हम तो दोपहर के टाइम पे आपके प्रोग्राम और आपके रेडियो से ही जुड़े रहते हैं
0: जी
1: और
0: जी
1: उसी का आनंद उठाते रहते हैं सर।
0: जी शीतल पदार्थों का सेवन करते रहिए जो ठंडक देते हों।
1: जी, क्योंकि तो जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसको व्यर्थ में जाने से तो अच्छा है कि इसका उपयोग करो। और इस समय अधिक मास चल रहा है, पूजा पाठ घर में करते रहे और
0: हाँ बहुत
1: इसमें
0: अच्छी बात
1: आनंद
0: है।
1: लेते रहे।
0: आज क्या फरमाइश रहेगी महेश जी कार्यक्रम में?
1: सर जमीर फिल्म का गाना है, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल।
0: बहुत अच्छा गीत चुना है आपने,
1: जी,
0: सुनवाते
1: और
0: हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।
1: आपको इस गाने के सुनाने के लिए मेरा हृदय से धन्यवाद सर, और सादर नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी फोन करने के लिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो आकाश मारी,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार आपको, नमस्कार। मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र श्री जरगाले धाम गड़ाया लखीपुर से पप्पू सिंह बात कर रहा हूँ सर जी।
0: स्वागत है आपका पप्पू जी कार्यक्रम में।
1: हाँ सर जी, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है आज।
0: हाँ, बहुत दिनों बाद आपने फोन किया। आज
1: सर हम मिलाते रहते हैं लेकिन लगता नहीं है फोन।
0: एंगेज रहता है, लाइन बिजी रहती है इस
1: जी
0: समय।
1: रहती है। हाँ और बताइए सर, कैसे हो आपको?
0: हम लोग अच्छे हैं सर, आप बताएं, आपके यहाँ सब ठीक है गांव में, घर परिवार में?
1: सब बढ़िया चल रहा है सर जी, और गांव में अधिक मास चल रहा है तो इस वजह से यमुना जी के किनारे और भागवत बैठी हुई है, और सुबह 1 बजे से 1:30 बजे से वो भवन में चले जाते हैं, फिर भागवत सुनने के लिए चले जाते हैं।
0: वाह वाह, बहुत अच्छे धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं इन दिनों।
1: जी, हाँ
0: बढ़िया बात है। आज कार्यक्रम में क्या फरमाइश रहेगी सर, बताइए।
1: सर, आप ही कोई अपनी पसंद से सुनवा दे, क्योंकि अधिक मास चल रहा है और इस उपलक्ष्य में कोई भक्ति गीत सुनवा दे आप ही।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये भक्ति गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार,
0: हम
1: कौन?
0: ग्राम पचावर से बोल रहे हैं, चंद्रपाल रावत। थैंक
1: चंद्रपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
0: यू सर, पहली बार फोन लगाया है। लगाते तो बहुत दिन से रहे हैं और सब आपके प्रोग्राम भी देख रहे हैं, लेकिन आज पहली बार लगाया हमारा तो।
1: बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका फोन लग गया हमारे कार्यक्रम में। क्या करते हैं
0: अपना
1: आप?
0: गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अब हाल फिलहाल तो पहले नौकरी की थी आगरा में।
1: अच्छा, कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं?
0: कार्यक्रम तो सर हम आपका करीब करीब 4-5 साल से सुन रहे हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, सभी कार्यक्रम सुनते हैं, शाम सुहानी और भी कार्यक्रम है सब।
1: बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही सुनते रहिए। अब हमें फोन भी करते रहा करिए।
0: हाँ,
1: आज बताइए, क्या फरमाइश है आपकी?
0: पहले फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर गाना है, मैं जिस दिन बुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं सर आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत
0: ठीक है,
1: धन्यवाद आपका।
0: आपको भी सर और आकाशवाणी टीम को भी धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर, नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: मैं सोचा, मैं गांव कुमा से भजनलाल बोल रहा था सर।
0: भजनलाल जी। कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: और सर ठीक है, आप कुशल हैं सर?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए, आप ठीक
1: हम भी
0: हैं
1: बहुत बढ़िया सर, काम ला रहा है प्रभु के पास, इस समय कोई बात नहीं है सर।
0: जी? गर्मी काफी पड़
1: हाँ
0: रही है, बच के
1: हाँ गर्मी तो
0: रहिए।
1: सर है, हम 11 बजे बाद फिर घर से नहीं निकलते सर।
0: हाँ, बहुत अच्छा नियम
1: 11 बजे
0: है
1: से घर रहते हो आते, जहाँ भी जाना है
0: जी।
1: 11 बजे
0: जी
1: से हम नहीं जाते सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर।
1: तो आज हमें धारा फिल्म दो रास्ते का सुनवा दिए सर।
0: कौन सा?
1: दो रंग दुनिया के दो रास्ते, एक रास्ता मंदिर को जाए, एक जाए मैं थाने।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर, आपके पत्र एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः आरंभ कर दिया रहा है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं, आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं, अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 25:30-135 फ़ोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। श्रोताओं, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा के निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा, पिन कोड नंबर है 281003। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना ये भक्ति गीत। फिल्म का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है हरि दर्शन। शब्द रचना प्रदीप की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

किशोर कुमार और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था अभी तो जी लें। और आइए अब सुनते हैं फिल्म चार धाम का ये भक्ति गीत। इस गीत को गाया है हरिहरन ने।

हरिहरन की आवाज़ में अभी आपने सुना ये भक्ति गीत, फिल्म का नाम था चार धाम। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म बजरंग बली से। इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर और साथियों ने।

गाए हुए फिल्म नीलकमल के इस गीत के साथ ही हमारा आज का भक्ति परक फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर, आपके पत्र एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः आरंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 पर होगी, यानी कि आज 12:30 पर होगी। आज है शुक्रवार। श्रोताओं, प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर

के फोन का प्रसारण पुनः आरंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 पर होगी, यानी कि आज 12:30 पर होगी। आज है शुक्रवार। श्रोताओं, प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 25-30-135 फ़ोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र आपके फ़ोन द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा, पिन कोड नंबर है 281003। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। श्रोताओ, हम आज आपसे इस कार्यक्रम में बात करेंगे गर्मी के विषय पर, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और बहुत लू चल रही हैं बाहर, इसीलिए इस विषय पर भी हम आपसे बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे आपकी फरमाइश के फिल्मी गीत। लेकिन आप हमारे इस विषय पर भी कुछ हमें लिखकर अवश्य भेजें। तो श्रोताओं, शुरू करते हैं कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम गीत बात और SMS के लिए जो संदेश हमारे पास आया है वो हमें लिख भेजा है सबसे पहले राजस्थान से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता जेल रोड गायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद और तरुण यादव। अगला संदेश हमारे पास आया है मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार शेख, सोहेल शेख, और ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहत पोत्रा, गुरशबद और इनके सभी संगीत साथियों ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार की। ये संदेश हमें लिख भेजा है मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ने मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता ने। और ये संदेश फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पारासर, बेबी आराध्य और लल्लू पंडित का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म जुनून का ये गीत। इस गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, हम आपसे बात कर रहे थे गर्मी के विषय पर। गर्मी अपने चरम पर है, काफ़ी लू चल रही हैं, इसीलिए अपना विशेष ध्यान रखें, ख्याल रखें। और एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये कि इस बार जो नौ तपा है, यानी कि नौ दिन जो सबसे भीषण गर्मी पड़ती है, वो शुरू हो रही है 25 मई से और 2 जून तक रहेंगे ये नौ तपा। नौ तपा में नौ दिन जो भयंकर गर्मी पड़ती है, उससे बचने के लिए आप अभी से जो है सावधान हो जाएं और सावधानी बरतें। खासकर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। और अगर आप दिन में, दोपहर में घर से बाहर निकल भी रहे हैं किसी विशेष कार्यक्रम की वजह से, विशेष आपको जाना पड़ रहा है, तो आप अपने सर को ढककर रख के जाएं, बिल्कुल अच्छे से छतरी लगाकर जाएं और पूरे हाथों को, सिर को कवर करके रखें। पुदीना का जो है रस लेते रहें, और जो आम का पना है उसे लेते रहें, नींबू पानी लेते रहें, शिकंजी लेते रहें। और श्रोताओं, नौतपा इसलिए भी ज़्यादा उन दिनों गर्मी पड़ती है क्योंकि इन दिनों जो है सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, और इसका कारण होता है सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हैं तब जो है नौतपा लगता है। इसीलिए इस सबसे बचने के लिए अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी में लू लग जाती है, किसी को डायरिया हो जाता है, इसीलिए अपना ध्यान रखते रहें। और जो अब हमें अगला मैसेज लिखा है वो आया है हमारे पास में उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और इनके सभी परिवारीजनों का। और ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है गांव नथाना से,

राजेंद्र सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता की। और ये संदेश अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीह, अनस और रेहान का। ये फरमाइश हमारे पास आई है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार की। अगला संदेश हमारे पास लिख भेजा है सतवीर सिंह बिजारनिया ने, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या ने। लिखने वाले हैं जिला सिरसा हरियाणा से। अगला संदेश जिला दुर्ग भिलाई से भाई मुकेश शर्मा, गौरव वरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा और इनके सभी परिवारीजन। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ यह गीत। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद।

है धांडी नांदूरा महाराष्ट्र से लिखने वाले श्रोता श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे। ये फरमाइश हमारे पास आई है जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति और सक्षम शाक्य की। अगला संदेश परमणी महाराष्ट्र से लिखने वाले श्रोता रूपेश संघाई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और इनके सभी परिवारीजन। जलालाबाद वेस्ट से लिखने वाले श्रोता सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। अगली फरमाइश हमारे पास आई है वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश, सनी भावसार और इनके सभी संगीत साथियों की। ये संदेश हमारे पास आया है वृंदावन चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक और इनके सभी परिवारीजन। अगला संदेश जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित, प्रथमेश, सर्वत, प्रणाली, सानवी, कल्पना और इनके सभी संगीत साथियों का। अगला संदेश अकोला से के शरद पाचपोर, शोभा, वैदेही, विहान, बाबू, रश्मि, अक्षय, अभिनय और इनके सभी संगीत साथी। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म चित्तचोर का ये गीत। इस गीत को गाया है यशुदास ने।

श्रोताओं, हम आपसे बात कर रहे थे गर्मी पर और नौतपा पर। नौतपा के यानी कि 9 दिनों को जो गर्मी के सबसे भीषण दिनों में गिना जाता है। इसे नवताप के नाम से भी हम जानते हैं। खेती के लिए नौतपा बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसको लेकर एक कहावत भी है, तपे नवतपा नव दिन जोए तो पुन परखा बरखा पूरन हो। यानी कि नौतपा के इन दिनों में जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी, आने वाले मानसून में उतनी ही अच्छी बारिश होगी। नौतपा के दौरान पानी का अधिक सेवन करना चाहिए। इस समय नारियल पानी, दही, मौसमी फल शरीर को जो है हाइड्रेट रखते हैं, इसीलिए इन सभी चीज़ों का सेवन अवश्य करें। और जो संदेश हमारे पास आया है, गंज डुडवारा से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, ज़हीर बेगम अंसारी, मोहम्मद आयान, मोहम्मद उस्मान अंसारी। ये संदेश हमें लिख भेजा है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से व्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष और इनके सभी परिवारीजनों ने। अगला संदेश हमारे पास आया है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी और अंकित कांगड़ा का। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है श्रीरामपुर से ही अशोक कुमार, अविका, सानू, अर्चना और इनके सभी संगीत साथी। ये फरमाइश हमारे पास आई है शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल और इनके सभी परिवारीजन। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत। फिल्म का नाम है कुली नंबर 1। स्वर पूर्णिमा और कुमार सानू के हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार है रेखा डांगुर।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार थी रेखा डांगोर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से

0: का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है, मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश

0: प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में राग जय जयवंती में ख्याल गायन। कलाकार होंगे भगवान दास शर्माया। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे प्रदेश दर्शन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा वनिता लोक। इसमें खान पान के अंतर्गत वार्ता प्रसारित की जाएगी, चटपटे मौसमी अचार। जानकारी देंगी माया रानी। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपराह्न 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा। संध्या 5:35 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। इसमें विज्ञान वार्ता

संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, खरीफ फसलों की आदान व्यवस्था एवं खेत की तैयारी। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अमर सिंह, भेंट करता होंगे वीरेंद्र सिंह।

संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे हास्य वार्ता। अब सूधे लोगन को जमानो नाए, वार्ताकार होंगे बसंत किशोर पाठक।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम नवरंग।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
2: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
1: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
2: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबरा हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
2: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
0: अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक।
3: मुश्किल

किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। FM 102.2 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मीनू अग्रवाल। मैनू गर्मी तो खूब पड़ रही है और देखने को भी मिल रहा है उफ गर्मी।

हाय गर्मी, आज कितनी गर्मी है। यही सब तो हमें सुनने और बोलने को मिल रहा है। और रियल में गर्मी भी तो बहुत पड़ रही है। गर्मी तो ज्यादा हर साल ही पड़ती है, लेकिन हमें लगता है इस बार बहुत गर्मी है। और जरा सोचिए, जो लोग चिलचिलाती धूप और हीट स्ट्रोक यानी गर्म हवा में घर सड़क जैसे निर्माण कार्य में लगे हों, या फिर किसान मजदूर, या हमें ही अपने काम की तलाश में इधर उधर जाना पड़ रहा हो, तो ऊपर से ये गर्मी और हीट स्ट्रोक का प्रकोप हो, तो उस समय अपने आप को सुरक्षित रख पाना या अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना मुश्किल सा हो जाता है। गर्मी से तो कैसे भी अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन बात हो हीट स्ट्रोक यानी गर्म हवा से, हवा जो कि हमारे लिए घातक हो सकती है, उससे कैसे बचें, कैसे अपना बचाव करें, इसलिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। गर्मी और हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं, जैसे कि घर से बाहर जाते समय पर्याप्त पानी जरूर पिएं। इसके साथ ही एक पानी की बोतल अपने साथ अवश्य रखें तथा घर घर तथा घूंट घूंट कर पानी पीते रहें। घर से निकलते समय अपने सिर को अच्छी तरह से ढक लें, दुपट्टा लें या छाता लें या कैप लें, जिससे भी ढकें, लेकिन ठीक से अपने सिर को ढककर ही घर से बाहर निकलें, जिससे गर्म हवा से बचाव होगा। और इस गर्मी के मौसम में जितने हल्के और लाइट कलर के कपड़े पहन सकें वही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि डार्क कलर के कपड़ों में गर्मी और ज़्यादा लगती है। इस मौसम में घर से बना भोजन ही लें, ना ज़्यादा तेल मसाले और ना ही फास्ट फूड, क्योंकि ये ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन जो होता है वो हमारी पाचन क्रिया को प्रभावित कर देता है, हमारा डाइजेशन बिगाड़ देता है। इस मौसम में मौसमी फल खूब आ रहे हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज तथा नारियल पानी आदि का सेवन जरूर करें। अब बात आती है पेय पदार्थों की, तो आप बाजार की ही कोल्ड ड्रिंक आदि ना लेकर घर पर ही ठंडा दूध, छाछ, लस्सी, नींबू, शिकंजी या गन्ने का रस और सबसे जरूरी आम पना, ये सभी शामिल करें। इससे हमारे शरीर को ठंडक मिलेगी और हीट स्ट्रोक भी प्रभावित ना कर सकेगा। यदि आप प्याज खाते हैं तो इसे अपने भोजन में जरूर शामिल करें। ये हीट स्ट्रोक से बचाने का सबसे अच्छा उपाय है, तरीका है। और दूसरी तरफ हमें गर्मी से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। यदि पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो गर्मी से हम अपने आप को नहीं बचा सकेंगे, तो वृक्षारोपण जरूर करें, साथ ही साथ पानी भी बचाएं। कहते हैं ना, जल है तो कल है। बस इस बात को अपने ध्यान में रखें कि इस कल को बचाना होगा पानी बचाकर। प्रकृति हमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती है कि उसकी हरियाली कम ना हो। हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा ख्याल रखेगी। इस प्रकार इन सभी बातों को अपनाकर इन गर्मी में क्या, आने वाली सभी गर्मियों को हम इंजॉय ठीक से कर पाएंगे। तो ये तो थी हमारी गर्मी से भरी हुई चर्चा, लेकिन एक प्यारा सा गीत भी सुन लेते हैं कुछ इस तरह। जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए, ना जाने कैसे हम आपके प्यार के काबिल हुए। ना भुला देना उन हसीन लम्हों को जब आप हमारी छोटी सी दुनिया में शामिल हुए।

0: हमें अच्छे खाने का शौक तो सभी को रहता ही है, और हमारी थाली में, खाने की थाली में दो तीन सब्जियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, और साथ में रायता भी होता है। लेकिन इन सभी का जायका बढ़ाने वाला चटपटा अचार ना हो तो खाना अधूरा सा लगता है। अब डेली डेली बाजार का अचार तो नहीं खा सकते हैं, इसलिए हम आपको घर पर ही चटपटे अचार बनाना सिखाएंगे, खान पान वार्ता के माध्यम से। और चटपटे मौसमी अचार की रेसिपी हमें बता रही हैं माया रानी, तो जानते हैं अचार बनाने की विधि।
1: हमारी आज की वार्ता का विषय है चटपटे मौसमी अचार। हम सभी बहनों

की सबसे बड़ी समस्या होती है रोज खाने में क्या बनाया जाए। कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कुछ सब्जी बनाने का, कुछ खाने का मन नहीं करता। रोज एक सी सब्जी बनाते बनाते और खाते खाते मन भर जाता है। तब याद आती है अचार की, साथ में मौसमी अचार की, जो खाने के स्वाद को दुगना कर देते हैं, साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। तो आइए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही मौसमी अचार की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आजकल बाजार में कच्चा आम, करेले, लिसोड़े बहुत आ रहे हैं, इनसे बहुत स्वादिष्ट अचार बनता है। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं आम की खट्टी लौंजी, जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती। आप अपने साथ पेपर पेन रखें। अब हम आपको बताते हैं इसमें लगने वाली सामग्री के बारे में। इसको बनाने के लिए आपको 250 ग्राम कच्चे आम धोकर छील लें, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म करें। तेल तेज गर्म होने पर 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी डालकर भून लें। भून जाने पर आम के टुकड़े डाल दें। 1 चम्मच नमक स्वादानुसार कम या ज़्यादा डाल लें। बीच बीच में चलाती रहें। इसको ढक दें। 10 से 15 मिनट में आम गल जाएगा। गलने पर आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च डालें। अच्छी तरह मिलाकर साफ सूखे जार में रखें। इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। यह अचार बहुत जल्दी बनता है और महीनों तक चलता है। फ्रिज में ज़्यादा दिन तक खराब भी नहीं होता है। अब आइए तैयार करते हैं मिर्च का अचार। मिर्च का अचार बनाने के लिए मिर्च मोटी होनी चाहिए, साथ ही सड़ी और गली नहीं होनी चाहिए। इसमें उपयोग में आने वाली सामग्री है मिर्च 1 किलो, नमक 30 से 35 ग्राम, करीब 3 साढ़े 3 चम्मच, काला नमक 1 चम्मच, हींग 2 चुटकी, हल्दी 2 चम्मच, गर्म मसाला 1 चम्मच, मेथी दाना 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, बड़ी इलायची 5 नग, अजवाइन 1 चम्मच, पिसी राई 2 चम्मच, पीली पिसी हुई सरसों 4 चम्मच, खटाई 10 से 12 चम्मच, सौंफ 6 चम्मच, तेल सरसों का 150 ग्राम। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें तेल को तेज़ गर्म करके ठंडा होने रखना है। सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी दाना, बड़ी इलायची को अलग अलग सूखा भून लें। सौंफ, जीरा, इलायची को दरदरा पीसें। मिर्च धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें, जिससे पानी सूख जाए। मिर्च का डंठल निकाल दें। मिर्च को बीच बीच में से चीर कर रख लें, अलग नहीं करना है। तेल ठंडा होने पर सभी मसाले मिला लें। फिर मिर्च में मसाला भर लें। मिर्च कहीं से सफ़ेद नहीं रहनी चाहिए। सूखे और साफ जार में दबा कर रखें, अच्छी तरह दबा दें। अचार फ्रिज में रखकर काफ़ी दिन तक चलता है। मिर्च निकालते समय हाथ सूखे व साफ होने चाहिए। इसके बाद बताते हैं हम तरबूज के छिलके का अचार। गर्मी का मौसम और घर में तरबूज ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज गर्मी में बहुत फ़ायदा करता है। हम सभी तरबूज खाने के बाद उसके छिलके फेंक देते हैं। आज मैं उसी छिलके का अचार डालना बताती हूँ। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। वह 4 से 5 दिन में तैयार हो जाता है। 1 तरबूज का लाल भाग निकाल दें। सफ़ेद वाले भाग के हरे छिलके से अलग कर लें। सफ़ेद भाग के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इन्हें धोकर कुकर में 1 सीटी आने तक उबालें, फिर सीटी निकाल दें। सभी तरबूज को 1 छलनी पर रख दें, जिससे पानी निकल जाएगा। ठंडा होने पर 1 चम्मच नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चुटकी हींग, 2 चम्मच पिसी पीली राई, 1 चम्मच मिर्च, 4 से 5 छोटी चम्मच सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह मिलाकर जार में भर दें। बीच बीच में चलाती रहें। 4 से 5 दिन में तैयार हो जाता है। फ्रिज में रखकर 15 दिन तक खाया जा सकता है। लिसोड़े का अचार। अचारों की बात हो और लिसोड़े का अचार ना हो, यह हो नहीं सकता। अब हम बताते हैं लिसोड़े के अचार। इसमें उपयोग में आने वाली सामग्री है 500 ग्राम लिसोड़े, 4 चम्मच सौंफ भूनकर पीस लें, 1 चम्मच मेथी दाना भून लें, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा, 4 चम्मच राई पिसी हुई, 3 चम्मच पीली सरसों पिसी हुई, आधा चम्मच काला नमक, 3 चम्मच नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चुटकी हींग, कुछ साबुत मसाले भी डालने हैं, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 2 कच्चे आम का कस। लिसोड़े दबे गले में दाग लगे नहीं हो। लिसोड़े धोकर डंठल निकाल दें। टोपी लगी रहने दें। एक भगोनी में पानी गर्म करने रख दें। पानी इतना लें जिससे लिसोड़े पूरे डूब जाएं। पानी में उबाल आने पर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालें और लिसोड़े डाल दें। बीच बीच में चलाती रहें। वे देखते रहें लिसोड़े ज़्यादा मुलायम ना हो जाएं। 10 से 15 मिनट में लिसोड़े मुलायम हो जाएंगे। ये फटने नहीं चाहिए। गल जाने पर पानी से बाहर निकालें। 1 सूती कपड़े पर सुखाने के लिए रख दें। सूखने पर टोपी निकाल दें। पंखे में 4 से 5 घंटे या धूप में 1 घंटे के लिए रखें। जब पानी अच्छी तरह सूख जाए तब अचार डालें। कढ़ाई में तेल गर्म करने रख दें। गर्म होने पर साबुत मसाले व हींग डालें।

भुनने पर गैस बंद करके सभी मसाले डालें, फिर लसौड़े मसाले में अच्छी तरह मिला दें। अमिया कस को भी मिला दें, अच्छी तरह मिलाकर सूखे साफ जार में भर दें। 3 चम्मच विनेगर भी डाल सकते हैं, जिससे अचार सालों तक खराब नहीं होता है। लसौड़े अचार में तेल ऊपर तक होना चाहिए, कम तेल में लसौड़ा खराब हो जाता है। तेल गर्म करके ठंडा होने पर डाल दें। अगर लसौड़ा ऊपर खराब हो जाता है तो लसौड़े में तेल गर्म करके ठंडा करके डाल दें। खट्टे अचार के साथ साथ अब चलिए बताते हैं खट्टी मीठी आम की लौंजी। इसमें लगने वाली सामग्री है 250 ग्राम कच्चे आम, 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक स्वादानुसार, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 5 चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच तेल सरसों का। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम धोकर छील लें और लंबे लंबे पीस में काट लें। कढ़ाई में तेल डालकर हींग, मेथी दाना, जीरा, हल्दी डालकर चटकने दें। अच्छी तरह भुनने पर आम की फांक डालकर धीमी आंच कर दें और ढक दें, बीच बीच में चलाती रहें। आम की फांक 10 से 15 मिनट में गल जाएंगी। गलने पर चीनी डाल दें, चीनी पानी छोड़ देगी। अच्छी तरह से पानी सूखने दें। पानी सूखने पर बाकी सभी मसाले मिला लें। ठंडा होने पर कांच के जार में भरकर रखें। यह मीठी लौंजी कई महीने तक खराब नहीं होती, वह खाने के स्वाद को बढ़ाती है। आम की खट्टी कसकी अचारी, देखिए आम ही आम है तो अब आम की हम बात करते हैं, तो खट्टी कसकी अचारी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आम कच्चे होने चाहिए, ज्यादा पके आम नहीं होने चाहिए। पके मुलायम आम से कस अच्छा नहीं बनता है। आम धोकर पोंछ लें, सूखने के बाद छीलकर कस बना लें। करीब 250 ग्राम आम का कस लें। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म कर लें। गर्म होने पर 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच हल्दी डालें। मसाले भुनने पर कस डालकर चला दें। 1 चम्मच नमक स्वादानुसार डालें। धीमी आंच पर ढककर पकने दें, बीच बीच में चलाती रहें। आमी पानी छोड़ देंगी, 5 से 10 मिनट में कस गल जाएगा। गलने पर 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च व 1/2 चम्मच गर्म मसाला डालें। अच्छी तरह मिलाकर ठंडा होने पर सूखे जार में भर लें। यह बहुत जल्दी बनता है और स्वादिष्ट होता है तथा काफी दिन तक खराब नहीं होता। खट्टा खट्टा खाने में बहुत अच्छा लगता है। आजकल बाजार में करेले बहुत आ रहे हैं, क्यों ना हम करेले का अचार डालें। अब हम डालते हैं करेले का अचार। 250 ग्राम करेले, 4 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा, 3 चम्मच राई पिसी हुई, 2 चम्मच पीली सरसों पिसी हुई, 1 चम्मच हल्दी, 1 चुटकी हींग, 5 से 7 दाने काली मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 150 ग्राम कच्चा आम कसा हुआ गूदा, 100 ग्राम सरसों का तेल। करेले ज़्यादा बड़े नहीं लें, नहीं तो पके हो सकते हैं। सभी करेले मीडियम साइज के लें। करेले धोकर पोंछ लें, फिर गोल टुकड़ों में काटकर 1/2 चम्मच नमक लगाकर रख दें। 10 से 15 मिनट में करेले पानी छोड़ देंगे। एक छलनी में रखकर नमक लगा पानी निकाल दें। फिर करेले के टुकड़ों को साफ पानी से 3-4 बार धो लें, जिससे उनका कड़वापन निकल जाएगा। एक भगोनी में पानी गर्म करने रखें। पानी में उबाल आने पर भगोने के ऊपर छलनी रखें। सारे कटे करेले छलनी के ऊपर रखकर ढक दें। 10 से 15 मिनट में करेले भाप से मुलायम हो जाएंगे। एक सफ़ेद साफ कपड़े पर सारे टुकड़ों को फैलाकर धूप या पंखे में सुखाने के लिए रख दें। धूप में पानी जल्दी सूख जाता है। इतने हम मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई में तेल गर्म करने रख दें। तेल धुआं निकलने तक तेज गर्म करें। दूसरी कढ़ाई में सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, मेथी दाना, जीरा, इनको हल्का ब्राउन होने तक सूखा भूनें। ठंडे होने पर दरदरा पीस लें। गर्म पैन में राई और पीली सरसों डाल दें। तेल ठंडा होने पर हल्दी, हींग और बाकी बचे हुए मसाले डाल दें। साथ ही आम का कस भी डालें। करेले के टुकड़ों को सभी मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लें। मसाले मिलाकर सूखे साफ जार में भर दें, बीच बीच में चलाते रहें। 3 से 4 दिन में खाने के लिए तैयार हो जाता है। करेले का अचार हम जब मौसम नहीं होता है करेले का तब भी खा सकते हैं। अचार तो सभी बहनें बना लेती हैं, परंतु उनके रखरखाव पर ध्यान नहीं देती हैं। और उनकी ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारे तो अचार ही खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ टिप्स बताती हूँ। अचार भरते समय जार हमेशा साफ व सूखा होना चाहिए। जिस चम्मच से अचार निकाले वह सूखा साफ हो और हाथ भी गीले ना हो। आटे या सब्जी के हाथों से अचार कभी भी ना निकालें। नमी वाले स्थान पर अचार नहीं रखें। बीच बीच में देखती रहें, फफूंदी तो नहीं लग रही। अगर फफूंदी लग रही हो तो उसे हटा दें। वह तेल वाले अचार में थोड़ा सा तेल गर्म करके ठंडा होने पर डाल दें। मीठे अचार में थोड़ी सी चीनी करीब 100 ग्राम डालकर गर्म करके ठंडा होने पर भरें। जहाँ तक हो कांच के जार में ही अचार रखें। इस तरह अचार को लंबे समय तक खराब

0: होने से बचाया जा सकता है, साथ ही अचार को पीरियड के समय में कम से कम 5 दिन तक नहीं निकालें।
1: वह श्रोताओं, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आने लगा चटपटे अचार की रेसिपी जानकर। मैं तो इनको ज़रूर बनाने वाली हूँ और आप भी माया रानी के बताए इन अचार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और खाने का जायका बढ़ाएं। अब थोड़ा सा जायका बढ़ाते हैं अपने इस गीत के साथ। कौन कहता है प्यार नशा बन जाता है, कौन कहता है प्यार सज़ा बन जाता है। अगर प्यार करो सच्चे दिल से तो वो प्यार ही जीने की वजह बन जाता है।

मैनू, जैसे कि हम आपको समय समय पर योजनाएं, दिवस आदि के बारे में अवगत कराते रहते हैं, ऐसे ही आज के दिन यानी 22 मई को एक दिवस और मनाया जाता है, वो है विश्व जैव विविधता दिवस। और इस बार की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। इस विषय का मुख्य उद्देश्य समुदाय, स्थानीय निकाय और आम लोगों के छोटे कदमों को जोड़कर वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करना और नुकसान को उलटना है। हालांकि जैविक विविधता को भावी पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य वैश्विक धरोहर के रूप में मान्यता मिल रही है, फिर भी कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण प्रजातियों की संख्या में भारी कमी आ रही है। इस मुद्दे पर जन शिक्षा और जागरूकता के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिवर्ष जैविक विविधता के लिए ये दिवस मनाने का निर्णय लिया है। जैसे कि वैश्विक समुदाय के प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जा रहा है। एक बात निश्चित है, हमारी सभी तकनीकी प्रगति के होते हुए भी अपने पानी, भोजन, दवाओं, कपड़ों, ईंधन, आश्रय और ऊर्जा जैसी बहुत सी चीज़ों के लिए स्वस्थ और जीवंत परिस्थितिक तंत्र पर पूरी तरह से निर्भर हैं। इसमें हमारी जैविक संपदा का सम्मान करना, उसकी रक्षा करना और उसे पुनः स्थापित करना शामिल है। तो ये तो थी हमारी चर्चा। अब हमारी घड़ी ने इशारा कर दिया है, जाने का समय हो रहा है। जाते जाते बस इतना ही कहूँगी, उम्मीदों के साथ शुरू होने वाला दिन किसी अनुभव के साथ ही खत्म होता है। तो इसी के साथ मीनू अग्रवाल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म दिल तेरा आशिक का ये गाना, और इस गाने को स्वर दिए थे सुदेश भोसले और साधना सरगम ने। तो अच्छी बात है।
1: दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अभिजीत, सुखविंदर सिंह और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल लगी। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं.
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड ड्यूरिंग द मीटिंग दे आल्सो डिस्कस्ड ग्लोबल इश्यूज.
0: भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल

0: 500 tournament. Chalihar, 71st in the badminton rankings, won the opening game but eventually went down against the 23rd ranked opponent, 23-21, 18-21, 11-21 in 61 minutes. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, Chennai Super Kings were all out for 140 in 13.4 overs. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in afternoon trade today. The Sensex climbed 535 points to 75,718, while the Nifty rose 154 points to 23,808 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi. Says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
2: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयास

0: प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित

0: याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। ये याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि BSF ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव

0: से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना मुकेश के स्वर में ये गाना। फिल्म का नाम था हिमालय की गोद में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म गाइड से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, संगीत SD वर्मन का है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था दो कलियां। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था रवि ने। आइए आप सुनते हैं आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, स्वर लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी के। फिल्म का नाम है दो रास्ते।

किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना, फिल्म का नाम था वो सात दिन। और इसी के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:10 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहें?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
2: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।

0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने के, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रहे। तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज रूप।
1: क्या बात, बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था। 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल ओ भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहां थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
1: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा, हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा
1: जी।
0: तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकारनाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
1: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
1: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो 1-2 फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया, वो सिखाते थे मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी
0: उसकी बू

0: जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जिसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता तो नहीं था, फिर भी
1: हाँ
0: अगर हुआ तो चैन नहीं होता
1: जी
0: था
1: जी
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका, चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये सवाल ऐसा है
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी
1: जी।
0: हम रहे पांच बच्चे
1: अच्छा,
0: मेरे पेरेंट्स के,
1: हाँ
0: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है,
1: हाँ
0: चाहे लड़की हो या लड़का,
1: हाँ
0: पिताजी भेंट में दे देते हैं एक वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है,
1: वाह।
0: तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: हाँ, जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा, त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को लेके
0: नहीं,
1: होता?
0: मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो इसीलिए उनका वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं। आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं? जी
0: वायलिन
1: जी
0: में,
1: जी जी
0: इंस्ट्रूमेंट में,
1: इंस्ट्रूमेंट में।
0: और जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: हाँ, क्या बात। अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है। तो उसके बारे में हमें बताइए, जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी
1: सेमी क्लास।
0: क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का,
1: जी
0: बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है, उसकी बात करते हैं अम्मा जी। आपकी शहनाई पर बिस्मिल्ला खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी।
0: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया,
1: जी,
0: खूब उन्होंने प्रोत्साहन
1: और जो
0: दिया।
1: कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी की थी?
0: बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे,
1: हाँ जी, हाँ जी
0: वो भी गायकी ही बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली के,
1: जी
0: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
1: बिल्कुल
0: था
1: बिल्कुल सही कहा आपने
0: लोगों को,
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझसे काफी सीनियर थे, तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन नहीं, पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: बिल्कुल। और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके साथ
0: मेरे
1: जुगल?
0: भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो तब वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी, अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं
1: जी जी
0: दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी क्या की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के

0: मौका मिलता था हम लोगों को और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है। जी। फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दिए इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में कर लोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जी उसे हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, उसके जब आए तो हाँ चल बजा। तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का? तो लोग हाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी।
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो

0: कैसे समझाती हैं?
1: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
0: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
1: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
0: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुन करके हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले आज की बात के अंतर्गत बात करते हैं विश्व जैव विविधता दिवस के विषय में। विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष आज के दिन यानी 22 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी ताकि लोगों को जैव विविधता और इसके महत्व के साथ ही साथ संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों की विविधता से है। जैव विविधता हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें भोजन, औषधियाँ, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु तथा अनेक प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अन्य जीव सुरक्षित रहेंगे तभी पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। आज के समय में बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। कई जीव जंतुओं साथ ही साथ वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो इसका दुष्प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ेगा। इसीलिए हम सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, जल संरक्षण करें और जीव जंतुओं के प्रति दया भाव और साथ ही साथ उनके देखभाल के लिए भी जागरूक रहें। छोटे छोटे प्रयासों से ही जैव विविधता को बचाया जा सकता है। जैव विविधता और इसको मनाने का दिवस हमें केवल एक ही संदेश देता है कि प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा ही मानव जीवन की सुरक्षा है। इसलिए हमें मिलकर जैव विविधता संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं विज्ञान वार्ता। विषय है पारिस्थितिकी असंतुलन, कारण और समाधान। जानकारी दे रहे हैं कृष्ण कुमार।
1: पारिस्थितिक तंत्र वातावरण और उसमें रहने वाले जीवधारी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हुए एक तंत्र बना लेते हैं। इस तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहा जाता है। इसकी अंग्रेजी इकोसिस्टम है। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग एजी टेंसले ने सन 1935 में किया। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वातावरण के सभी जीवित यानी कि लिविंग या बायोटिक और निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग या एबायोटिक घटकों के संपूर्ण संतुलन के परिणाम स्वरूप बनी हुई प्रणाली है। पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है। इस तंत्र में जीवीय और अजैव घटक सतत एक दूसरे के साथ क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, वायवीय पारिस्थितिक तंत्र तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। इसमें सजीव और निर्जीव एक घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सजीव घटकों

के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु तथा मनुष्य आते हैं। ये घटक एक दूसरे के लिए पोषण या आहार का कार्य करते हैं। पोषण के आधार पर इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली, प्रथम उत्पादक जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाते हैं। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्लस धन 6 पानी के अणु क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सी कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लूकोज, धन 6 ऑक्सीजन के अणु उत्सर्जित वातावरण में करते हैं। दूसरा है द्वितीय उत्पादक या उपभोक्ता। ये भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको परपोषी कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, शेर, मेंढक, भालू आदि। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वभक्षी उपभोक्ता कहा जाता है। नंबर 2, निर्जीव घटकों। इसके अंतर्गत जल, वायु, पोषक तत्व, अकार्बनिक पदार्थ, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, वसा और सौर ऊर्जा आदि आते हैं। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। निर्जीव घटकों के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव है। किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या उनकी कमी होने से पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होता है। इसके कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, बढ़ती हुई आबादी से पर्यावरण खतरे में पड़ता जा रहा है। प्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री माल्थस के अनुसार खाद्य सामग्री में वृद्धि सदैव अंकगणितीय क्रम जैसे 1, 2, 3 .. में होती है तथा जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय क्रम जैसे 2, 4, 6, 8 .. में बढ़ती है। नंबर 2, मथुरा में साड़ियों की रंगाई एवं कढ़ाई के 1200 कारखाने हैं। इन रसायनों एवं रंगों से युक्त दूषित जल यमुना नदी में गिरता है, जिससे इसका जल दूषित हो रहा है। आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि यमुना में इतनी मछलियां मारी गईं। इस जल को फसलों की सिंचाई के काम में भी नहीं लाया जा सकता है। नंबर 3, वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर कैंसर जैसे रोग उत्पन्न कर रही है। नंबर 4, वनों की अंधाधुंध कटाई तथा रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि के उपजाऊ तत्व नष्ट हो रहे हैं और अच्छी फसल हमें प्राप्त नहीं हो रही है। नंबर 5, आधुनिक कृषि हमारे पारिस्थितिक तंत्र को कई तरह से असंतुलित कर रही है। DDT, गेमिक्सिन, यूरिया का प्रयोग पर्यावरण को प्रदूषित दिन प्रतिदिन कर रहा है। पारिस्थितिक असंतुलन से

0: बचने के उपाय इस प्रकार हैं। नंबर एक, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से पेड़ों को काट रहा है तो उसे रोकना चाहिए, यह बताना चाहिए कि यह कानूनन जुर्म है। नंबर 2, भारत में प्रतिवर्ष 10 करोड़ मेंढक पश्चिमी औद्योगिक देशों को निर्यात किए जाते हैं। यदि ये मेंढक जीवित रहते तो 1,000 टन मच्छरों व फसल नाशी जीवों का प्रतिदिन सफाया करते तथा मानव व फसल की रक्षा करते। आज स्वच्छ ईंधन से चलित यातायात बढ़ रहे हैं, जैसे CNG, इसका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तथा LPG, इसका पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होने से बच रहा है। इसका प्रयोग डीजल पेट्रोल के यातायात के स्थान पर किया जा रहा है। नंबर 4, प्लास्टिक की थैलियों या प्लास्टिक पाउच का उपयोग ना करें। बाजार जाते समय सूती कपड़े का थैला प्रयोग करें। नंबर 5, मनुष्य प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन तथा मित्र है, क्योंकि इसको प्रथम श्रेणी उपभोक्ता तथा तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में रखा गया है। नंबर 6, हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं और दूसरे लोगों को पारिस्थितिक असंतुलन करने से रोकें।
1: तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे विज्ञान वार्ता, पारिस्थितिकी असंतुलन कारण समाधान। जानकारी दे रहे थे कृष्ण कुमार। और अब बात करते हैं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन। जी हाँ दोस्तों, तकनीकी शिक्षा द्वारा व्यक्ति की कार्यक्षमता, दक्षता और व्यावसायिक कौशल को विकसित करना, ताकि वह आधुनिक तकनीकों के अनुसार बेहतर रोजगार और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। आज के आधुनिक युग में तकनीकी शिक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है। यह शिक्षा विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ITI, मशीनरी, डिजिटल तकनीक आदि क्षेत्रों में भी तकनीकी शिक्षा युवाओं के कौशल को निखारती है और उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाती है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, नए अवसर प्राप्त करता है और देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। और आइए अब चलते चलते सुन लेते हैं रवि शेरगिल की आवाज में ये गीत।

तो दोस्तों, ये गीत अभी आप सुन रहे थे रबी शेरगिल की आवाज़ में फिल्म दहली हाइट से। और अब चलते चलते आपने युवाओं से बस यही कहना चाहेंगे, आजकल का युवा बहुत ही जल्दी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। युवाओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि कठिन समय स्थायी नहीं होता, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलने का सबसे बड़ा ताकत है। इसी के साथ और अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली

0: हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

डीजी प्रस्तुत है सांधकालीन सभा में प्रसारित होने वाले और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम प्रदेश दर्शन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी संध्या 6:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे उत्पादन बढ़ाने हेतु फसल चक्र अपनाएं और लू और गर्मी से किसान सुरक्षा। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं भेंट वार्ता जिसका विषय होगा खरीफ फसलों की आदान व्यवस्था एवं खेती की तैयारी। जानकारी देंगे डॉक्टर अमर सिंह, भेंट करेंगे वीरेंद्र सिंह। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में 7:05 पर हम आपको सुनवाएंगे हास्य वार्ता अब सूदे लोगन को जमानो नाए। वार्ताकार होंगे बसंत किशोर पाठक।

श्याम सुहानी। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:20 पर सुनिएगा देशभक्ति परक रचनाएं।

एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:30, रात्रि 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग।

रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं भगवान दास शर्मा का ख्याल गायन। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्र और फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का पुनः प्रसारण हम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। यदि आपको हमारे कार्यालय से कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं देनी है या आपको ये भी बताना है कि हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, साथ ही साथ आपके कुछ सुझाव हैं, तो वो आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर होगा 2530-135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं दिलीप यादव।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुन्ने बारे सब किसान भैया बहनों को दिली प्यार की राम राम। किसान भैया, गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी ने हलक सुखा रखे हैं, चाहे हमारे पशु हों, पक्षी हों या मनुष्य हों, सब गर्मी से परेशान हैं और मथुरा में भी तापमान 46 के पार चल रहा है। अब प्रतिकूल परिस्थिति के बाद अनुकूल परिस्थिति की बात करें, देखो अब कछु समय के बाद ही हमारे धान की फसल की बुवाई की तैयारी, नर्सरी डारबे की तैयारी किसान भैया करने लगे हैं, तो उत्पादन बढ़ाने हेतु फसल चक्र अपनाएं, यह विषय पे हम अपनी पहली चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसान भैया, हम देख रहे हैं कि हमारे मथुरा जनपद में और बहुत से इलाके, उत्तर भारत की भी हम बात करें तो ज़्यादातर स्थिति यही है कई राज्यों में कि गेहूं और धान, ये दो फसल किसान भैया ने मोटा मोटी अपना ली हैं और गेहूं धान को जो फसल चक्र है, बाकी वजह से कई तरह की समस्या, या बार तो गेहूं को मामा या गुल्ली डंडा और फेलिस माइनर के नाम से भी जाने हैं, बहुत बड़ी समस्या बन के उभरो है। और समस्या इतनी जटिल रही है कि किसान भैया की जो फसल 40 मन को भिगो बैठो करीब 20 मन पे 18 मन पे अटक गई है, यानी कि अगर आपने फसल चक्र को नहीं अपनाया हो तो ये जो दिक्कतें हैं उत्पादन में इजाफे की बजाय और कमी है वो तय है। तो देखो, गेहूं और धान ये दोनों फसल ऐसी हैं जिनमें पौधा जो है सघन हो, पास पास हो, और इनकी जो जड़ है बहुत छोटी, 1 इंची 2 इंची 4 इंची ज़मीन में से पोषक तत्व उनको अवशोषण करें हैं। तो और दोनों में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है अनाज की जो माप है, यानी कि वाको जो वजन है वो बहुत ज़्यादा हो। धान में अभी 30-35 मन को भीगो और गेहूं में 40-45 मन को भीगो, तो ये जो अनाज बनने की जो प्रक्रिया है या के काजे जो जरूरी तत्व है, ताकत है, वो हमें ज़मीन से ही मिले है। लेकिन लगातार हम ज़मीन से 30-30, 40-40 मन गेहूं, यानी पूरे साल की हम बात करें दो फसलन की, तो 70-80 मन तक उत्पादन हम ले रहे हैं अनाज के रूप में, लेकिन वह कुछ दे कहा रहे हैं। गोबर की खाद की हम बात करें तो हमारे किसान भैया से पूछोगे तो कोई कहेगा पिताजी के ज़माने में कभी डरो होगा तो डरो होगा, अब तो हमारे पास ढोरे ही ना है, खाद कहाँ से लेके आवें। तो केवल DAP, यूरिया, जिंक, पोटास जो रासायनिक उर्वरक हैं उन पर ही किसान भैया की निर्भरता बढ़ी है। और देखो, रासायनिक खादन को भी पौधन तक पहुँचावे के काजे हमारे जो जीवाणु हैं जिनको हम आँखन सुनाई देख सके हैं, उनकी ज़रूरत हुई और वो हमें हमारी कंपोस्ट खाद सो, गोबर की खाद सो, ढेचा की खाद सो। तो फसल चक्र उत्पादन बढ़ावे की बहुत ही उपयुक्त तकनीक है। हालांकि किसान भैया भी और जागरूक है, वे लगे हैं। अब जिन भैया के गेहूं की फसल मार्च के बाद कटी हती, उनने बहुत से ने ढेंचा की फसल डाली हती, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ये रहे कि हमारे यहाँ जो बीज की उपलब्धता है या सरकारी केंद्रन पर बीज जो आवे है वह में थोड़ा सा विलम्ब, सरकार की नीति फाइल इनको लंबे समय तक चलवो, तो समय से अगर बीज की उपलब्धता जिन राज्यों में है जाए तो वहाँ किसान भैया अच्छो लाभ ले पाए, जहाँ थोड़ी देरी है जाए वहाँ किसान भैया को निजी अपनी जेब से बाजार से खरीद के ढेंचा जैसी फसल को लगाना पड़े। पिछले कछु सालों से किसान भैया ने बीच में एक फसल मूँग की या उड़द की लेवे की शुरुआत भी करी है। तो ये जो फसल चक्र की बात है, या मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दलहनी फसलन को समावेश दोनों फसलन के बीच में, या फिर गेहूं की फसल को काट के कम थोड़े थोड़े इलाके में, अगर आपके पास 5 बीघा ज़मीन है तो वह में से 2 बीघा ज़मीन में आप गेहूं की जगह सरसों लगावें, तो जो खरपतवार की समस्या है, गेहूँ के मामा की समस्या है, वो फसल बदलवे से ख़त्म होगी। और या के अलावा देखो, सरसों के पौधा की हम बात करें तो कम से कम 1 फुट की दूरी पर या 9 इंची की दूरी पर है, और या की जो जड़ है वो मूसला जड़ हो, यानी कि बिल्कुल जैसे मूली अंदर तक जाए वैसे ही 9 इंची 10 इंची 12 इंची तक अंदर जाए। तो कहाँ गेहूं की जो जड़ है वो 2 इंची में से पोषक तत्व उनको अवशोषण कर रही हैं और सरसों की जो जड़ है वो 1-1 फिट नीचे 2 फिट नीचे तक अपने ज़रूरत के काजे अवशोषण कर रही हैं, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो फसल चक्र अपना के ही हम बहुत सी समस्याओं को समाधान पा सके। और रेट की हम बात करें, देखो सरसों का रेट भी बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ के जो किसान हैं सरसों की खेती करते रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यह है कि ठंड के समय पे ये लगे कि भाई कहीं ठंड में सरसों गल न जाए, लेकिन अब रासायनिक तत्वों की हम बात करें तो ऐसे ऐसे तत्व, ऐसी ऐसी दवा आ गई है कि सरसों खूब ठंड पड़ी है, लेकिन वाकई बाद भी किसान भैया को अच्छी उपज सरसों से मिली है, या हमें खाद भी कम लगाने पड़े, 1 हल्को सो 10-12 किलो खाद

में काम चल जाए, पानी हो एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो लगाने पड़े, यानी लागत भी कम, देख रेख भी कम और मुनाफा ज़्यादा। तो फसल चक्र अपना के हम अपनी जो माली हालत है वाकू भी सुधार सके हैं, और बाकी अलावा जो अनावश्यक खर्चा है फसलन में, खरपतवार प्रबंधन पे, कीट प्रबंधन पे, बासों भी बच सके हैं। तो किसान भैया, ये रही हमारी पहली चर्चा उत्पादन बढ़ाने हेतु फसल चक्र विषय पे। अब करें दूसरी चर्चा, क्योंकि गर्मी की बात शुरुआत में हमने करी, गर्मी और लू से किसान सुरक्षा। तो किसान भैया, वैसे तो आप सब जानो ही हो, क्योंकि हमारे किसान भैया इनके सर पे गमछा आप सब ने देखो ही होगो, पगड़ी बहुत से किसान भैया पहने हैं। तो ये जो गमछा है वो हमारी ऊष्मा को संरक्षित करे है, पसीना आतो रहे है, हमारी जो तापमान वायुमंडल को है वहाँ से हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखे है। और ज़्यादातर किसान भैया देखो जंगल में रहें तो पेड़न की छाँव के नीचे तो तापमान वैसे ही 5-7 डिग्री कम रहे। तो खान पान की हम बात करें, देखो किसान भैया पशु पाले हैं ज़्यादा तादाद में, तो सुबह घर से निकले तो अगर मठा पी के निकले ही हैं, ताज़ी पानी उनके जहाँ खेत हैं वहाँ हैंडपम्प से आवाज़ से ताज़ी पानी की व्यवस्था वो रखे ही हैं। तो लू से बचने के काजे खाली पेट कोई काम न करें, खेत पे अगर जा रहे हैं तो अपना नाश्ता में चाहे घर में जो भी चीज़ है वो लेके जावें, क्योंकि लू खाली पेट की स्थिति में या कम पानी की स्थिति में लगने की संभावना ज़्यादा रहे। और ज़्यादा कड़ी धूप निकलने को जो समय है वो दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच में, तापमान चाहे रात की बात हो या दिन की बात हो, चाहे गर्मी की बात हो या सर्दी की बात हो, अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 2 बजे के आसपास रात में और 2 बजे के आसपास दिन में। तो ठंड के दिनों में रात को 2 बजे के आसपास ठंड ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी के दिनों में दोपहर के 2 बजे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो हमको या समय को ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में पर्याप्त पानी है कि ना है। अगर प्यास लगी है तो निश्चित रूप से पानी पी के रहें, ठंडी जगह पर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो भैया ये रही चर्चा। अब कार्यक्रम में देखो चर्चा तो बहुत है गई और आपको और भी जानकारी हम दिलवाएंगे। अब सुनवा में एक प्यारा सो लोकगीत, चलोरी चले परकम्मा जय गायो है पन्नालाल शर्मा ने।

0: तो किशन भैया चलोरी चले पर कम्मा, पन्नालाल शर्मा के स्वर में आप सबने सुनो ये लोकगीत। चूंकि अधिक मास चल रहे हो और अधिक मास में गोवर्धन की परिक्रमा लग रही है और दिन में चूंकि तापमान बहुत है तो रात के समय में रात को गोवर्धन महाराज के जयकारे चारों ओर कुछ सुने जाएं, और शर्मा जी ने यही भाव अपने लोकगीत के माध्यम से व्यक्त किए हैं। अब कार्यक्रम में आपको सुनवा में एक भेंट वार्ता, खरीफ फसलों की आदान व्यवस्था एवं खेत की तैयारी, यह विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अमर सिंह और इनसे भेंट करी है वीरेंद्र सिंह ने।
1: किसान भैया, जैसे को आप जानो कि यह समय पे अब खरीफ की फसल की तैयारी चल रही है, तो खरीफ की फसल में जो आदान व्यवस्था और खेती की तैयारी हम कैसे करें, यह विषय पर एक भेंट वार्ता आप भैया सुनवा में। हमारे संग हैं डॉक्टर अमर सिंह जो कृषि विशेषज्ञ हैं और जानकारी देंगे भैया कि भाई कैसे कैसे हम अपनी खेती को तैयार करें जाते कि हमें अच्छी उन्नतशील फसल प्राप्त करें। डॉक्टर साहब राम राम सर।
2: राम साहब, किसान भाइयों, जैसा कि आप हर साल हमेशा से खेती करते आ रहे हो और ये एक ऐसा हमारा बिजनेस है या इस तरह का वो है कार्य कि
1: जी
2: जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, उसके बाद भी हम अब इस विधा में एकदम ऐसे पारंगत नहीं हुए अभी तक।
1: जी
2: क्यों? क्योंकि खेती जो है, खेती में और दूसरे बिजनेसों में और फैक्ट्रियों में बड़ा अंतर है। ये खुले में होता है सब कुछ
1: छोड़े में
2: और हर जगह की
1: जी
2: आप अगर 50-40 किलोमीटर थोड़ा सा देखोगे चल के आगे इधर उधर, तो माइक्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, सूक्ष्म पारिस्थितिकी जो स्थितियां हैं, जलवायु हैं, वो हमेशा बदल जाती हैं। तो
1: बिल्कुल
2: निश्चित रूप से ये इसीलिए हम लोग पारंगत नहीं हो पाते कि हमारे यहाँ क्या तापमान है, हमारी मिट्टी किस तरह की है,
1: बिल्कुल
2: हमारे यहाँ कितनी बरसात होगी, कितना पानी है, कैसा पानी है, और किस तरह की जो है कब बुवाइयों का समय है। और उसी चीज को अगर थोड़ा सा और बढ़ते जाएंगे दूर की देखोगे तो वो अपने आप में अलग होगी।
1: बिल्कुल
2: तो हर जो है जलवायु परिस्थितिकी के हिसाब से जो माइक्रो फार्मिंग सिचुएशन होती हैं, एग्रीकल्चर जो जलवायु क्लाइमेटिक जो जोन होते हैं, 15 जोनों में हमने जो है पूरे इंडिया को बांटा हुआ है,
1: जी जी
2: और 10 जोन में हमने पूरे जैसे राजस्थान को बांटा है, इस तरह उत्तर प्रदेश के भी अपने जोन बटे हुए हैं।
1: बिल्कुल
2: उस जोन के हिसाब से ही व्यवस्थाएं होती हैं, और उस जोन का जो जोनल स्टेशन होता है वो वहां की लोकल समस्याओं का समाधान करता है। तो निश्चित रूप से जैसे अभी आने वाली खरीफ का सीजन है,
1: जी
2: लेकिन अब समय इतना बदल गया है कि आपको ऐप के थ्रू, प्रसार भारती के थ्रू, कहीं से भी आपको जानकारियां तो खूब अवेलेबल होती हैं।
1: हाँ
2: तो आपको ये चाहिए क्या

0: कि आने वाले समय में जैसे आदान व्यवस्था हमको करनी है, पूरे साल भर का वो बनाना है कार्यक्रम, फसल चक्र बनाना है, तो हमारा जो कृषि का जो जो वर्ष है, कृषि का वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक चलता है। इसमें आप 2 फसल लेते हो, 3 लेते हो या 3 से अधिक लेते हो, ये आपको पहले बनाना पड़ेगा बैठ के। इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम व्यवस्था करते हैं, जैसे कि हमारे पास पानी कितना उपलब्ध है, है ना, पानी कितना उपलब्ध रहेगा उस हिसाब से फसलों का चयन हम लोग करेंगे। तो अभी जैसे खरीफ आ रहा है, खरीफ में विशेष रूप से मैं ये देखता हूं कि अगर 20-20 दिन तक, 25 दिन तक बरसात नहीं भी होती है तो फसल सूखने के कगार पे आ जाती है, लेकिन लोग सिंचाई नहीं करते। मैंने ये महसूस किया है, तो इस तरह का हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास ट्यूबवेल है और सब कुछ लगा है, हमको करना क्या है, जब फसल इस तरह की बीच में अगर सूखे की जो अवधि है वो बढ़ रही है और फसल उस समय उसकी कोई क्रिटिकल स्टेज है, क्रांतिक अवस्था है, तो हर क्रांतिक अवस्था पे अगर आपने पानी नहीं दिया तो आपकी पैदावार निश्चित रूप से गिरेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो इस चीज को थोड़ा सा, एक तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें, दूसरे एक चीज जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी भी शादी विवाह भी करते हैं या कोई फंक्शन करते हैं, तो आप देखिए कि सारी व्यवस्थाएं जो
1: पहले
0: 15-20 दिन बाद तक के फंक्शन में चलेंगी, उसको कहीं ना कहीं हम पहले से नोट करते हैं और किस दिन क्या होगा, कौन कौन से काम हमको पहले करने हैं, है ना। तो इसी तरह खेती के लिए भी हमको निश्चित रूप से अच्छी पैदावार लेनी है, सफल पैदावार लेनी है, सक्सेसफुल रहना है, तो निश्चित रूप से हमको व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो इसमें सबसे बड़ी व्यवस्था जो दो चीजों की जो हम लोग मान के चलते हैं, जिसमें कि पैसा खर्च भी होता है, एक तो होता है उर्वरक और पोषक तत्व।
1: जी,
0: चाहे आप यूरिया लगाओ, डीएपी लगाओ, एसएसपी लगाओ, दवाइयां लगाओ, जो भी कुछ लगा रहे हो, किसी भी तरह खड़ी फसल पे छिड़काव करो, तो इनके लिए हमको जो है व्यवस्थाएं करनी है। ये व्यवस्था निर्भर करेगी आपकी उसके ऊपर, मिट्टी के, आपकी जो मिट्टी है, आपके खेत की जो मिट्टी है, उसमें उन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा पहले से है। क्योंकि मैं ऐसा मान के चलते हैं हम लोग कि कोई भी ऐसी खेत नहीं आपने शायद छोड़ा होगा, मैं जहां तक समझ रहा हूं, कि जिसमें सरसों ली हो, गेहूं लिया हो और उसमें डीएपी और यूरिया नहीं डाला हो।
1: बिल्कुल डाले हो,
0: है ना साहब। तो अगर ये सब चीज डाली है और आपने ये भी खूब सुन रखा है कि भाई जितने भी रासायनिक उर्वरक होते हैं वो एक बार में काम नहीं आते हैं, उनका जो रेजुअल इफेक्ट है, जो जो तत्व है उसका जो है वो दूसरे साल भी काम आता है, कुछ जमीन में पड़ा रहता है, कुछ फिक्स हो जाता है, तो कितनी मात्रा में वो पोषक तत्व पौधे ने लिया, तो वो तो हम लोग फसल कट गई, फसल उठ गई, उससे पता नहीं लगेगा, लेकिन आपने जो डाला है उसमें से कितना हमारे मई जून के महीने में हमारी खेत के अंदर उपलब्ध है, जिसको हम उपलब्ध नत्रजन, उपलब्ध फास्फोरस, उपलब्ध पोटास, कैल्शियम, फेरस, जो भी हमारे जो तत्व हैं, जैसे 16 तत्व हम मान के चलते हैं, तो 16 में 3 तो ऐसे ही हैं जिनकी व्यवस्था परमात्मा कर ही रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है उनकी तो, लेकिन बाकी के जो 13 तत्व की व्यवस्था है उनमें से भी मेजर जो हमारे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी व्यवस्था हम लोग करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में 10-15 साल में ऐसी स्थिति आई है कि पहले तो हम सब्जी और फलों के लिए सोचा करते थे कि इनमें सूक्ष्म तत्वों की जरूरत होती है, हैं, लेकिन अब हर फसल में, हर फसल में ही सूक्ष्म तत्वों की जरूरत होने लगी, और सूक्ष्म तत्वों की मात्रा जरूर कम डलती है, 1 किलो डलेगा, आधी किलो डलेगा, है ना, 500 ग्राम डलेगा, लेकिन वो डलना आवश्यक है, क्योंकि उसका संबंध सीधा सीधा आपके मुख्य जो तत्व है उनसे होता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि जिस खेत में जिंक की कमी होगी, है ना, जिंक की कमी, 6 ppm से जिंक कम होगी, उस खेत में फास्फोरस पौधा नहीं ले पाएगा पर्याप्त मात्रा में। देखिए एक दूसरे से संबंध है ये, जिंक की कमी, और जहां और ये, इसी को मैं अब दूसरी तरह से कहूं कि जहां पानी भर गया, 15-20 दिन पानी जिस खेत में भर गया, 1-2 फीट खड़ा है, उस खेत की गंधक और उस खेत का जिंक दोनों के दोनों बहुत नीचे चले जाएंगे, जो कि पौधे को उपलब्ध उसके जीवन में नहीं होंगे। तो क्या होगा, इन दोनों तत्वों की कमी दिखाई देगी आपको। अच्छा, अगर गंधक की कमी है और आप तिलहन वाली फसल ले रहे हो, है ना, जैसे सरसों ले रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको गंधक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो आप कितनी बढ़िया वैरायटी ले आओ, कितनी बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, कितनी बढ़िया व्यवस्था कर लो, उस जब आपको तेल जो जिससे बनता है वही चीज उसके अंदर नहीं होगी मान लो, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए आपको मिट्टी की जो नमूना है वो आवश्यक रूप से इन दिनों में, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि इन दिनों में जो जितना भी जो बीमा

0: जो जो उर्वरक ऐसे होते हैं ना अपने, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह का, या खार का या क्षार का, क्षारीय होगी या लवणीय होगी जो जमीन, उसमें सब ऊपर आ जाता है धीरे धीरे धीरे, पानी के साथ में ऊपर चला आता है, पानी उड़ जाता है और अपने देखो कि सफेद रेहसी जो है खेतों में जो बन रही है,
1: जम जाए।
0: तो भाई उसमें कितनी मात्रा है ऐसे तत्वों की जो नुकसानदायक तत्व हैं फसल के लिए, उनकी कितनी मात्रा है।
1: बिल्कुल।
0: पहले हमको कई बार क्या, हम क्षारीय मिट्टी जो होती है उसमें दिखता नहीं, सफेद रेह नहीं दिखती, क्षार के अंदर नहीं दिखती, लेकिन लवणीय जो होती है हमारी मिट्टी, उस लवणीय में सफेद सफेद रेह बनती है।
1: बिल्कुल।
0: तो लवणियों का इलाज क्या है कि लवणीय जमीन को आप लवण, क्योंकि ज्यादातर पानी से बने हैं, तो पानी से बने हैं तो लवण को आप खत्म तो नहीं कर सकते, ना खुरच के कहीं फेंक सकते,
1: ना।
0: लेकिन उसका ये तरीका है कि इन दिनों में अगर आपने गहरी जुताई कर दी, और वो भी डिस्क हैरो से नहीं, या तो आपका बोल्ट जो है ये कल्टीवेटर हो
1: हाँ,
0: अच्छा सा, या मोल्ड बोल्ट प्लाव हो या डिस्क प्लाव हो,
1: डिस्क प्लाव
0: तो
1: हो।
0: उससे अगर आपने गहरी जुताई कर दी है और पहली एक दो बरसात का पानी पूरी तरह से उसमें चला गया है, तो ये मान के चलिए कि काफी मात्रा में आपका जो जो खराबी थी खेत की वो बहुत नीचे चली गई
1: चली
0: है
1: गई।
0: ना, तो उसमें फिर आने वाले समय में अच्छी फसल भी हो
1: अच्छा डॉक्टर
0: जाएगी।
1: साहब, जैसे कि अब
0: जी
1: हमारे किसान भैया यासमय खरीफ की फसल करेंगे, तो अब कौन कौन सी ऐसी तैयारी उनको करनी की है जो अब
0: बिल्कुल
1: यासमय कर लें तो जाते 50% उनकी
0: बि,
1: समस्या
0: बि,
1: दूर
0: बि,
1: हो जाए।
0: बिल्कुल जैसे एक तो खेत का लेबलिंग, मेढ़बंदी
1: जी।
0: और मिट्टी की जांच, और इन दोनों से पहले आपको सबसे ज्यादा शुरुआत करनी है कि गहरी जुताई,
1: गहरी
0: जिन्होंने अब तक
1: जुताई।
0: नहीं की है वो किसान भाई गहरी जुताई कर दें, क्योंकि इस समय जो तापमान चल रहा है वो आप चाहोगे तो कभी पैदा नहीं कर सकते। ये जो तापमान है इसका एक ही सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे जितने भी बीमारियों के, विशेष रूप से सफेद रोली के या इस तरह के, या जितने भी फफूंदजनक बीमारियां होती हैं,
1: जी।
0: उनके जो स्पोर्ट्स जमीन में कुछ पड़े हुए हैं वो मरेंगे, जो खास तौर से जो बीमारी वाले जो की हम जो बीमारियों कीड़े जो आते हैं, कीड़ा कीड़े जो अंडे छोड़ गए हैं वो मरेंगे। और इससे और बड़ी बात ये होती है कि कई बार जो खरपतवार होते हैं ना उनके
1: जी
0: बीज भी काफी मात्रा में इससे खत्म हो
1: हो
0: जाते हैं।
1: जाते
0: तो
1: हैं,
0: इन
1: जल
0: चीजों
1: जाते
0: को
1: हैं।
0: थोड़ा सा ध्यान में किसान भाई अगर रखेंगे तो
1: बिल्कुल।
0: निश्चित रूप से अपनी पैदावार ज्यादा से ज्यादा ले सकेंगे पूरे के साल भर के फसल चक्र के अंदर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने
0: धन्यवाद जी,
1: जानकारी दी। राम राम साहब।
0: साहब राम साहब।
2: तो किसान भाइयों, आपने ली जानकारी खरीफ फसलों की आदान व्यवस्था एवं खेत की तैयारी विषय पर, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अमर सिंह और इनसे भेंट करी वीरेंद्र सिंह ने। निश्चित रूप से किसान भैया, डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी होती, और यहाँ पे आप सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे तत्व की वजह से दूसरों तत्व प्रभावित हुए, बाकी कमी से बाकी अधिकता से हमारी फसल को उत्पादन प्रभावित हुए। अगर जिंक में डीएपी मिलाएंगे तो डीएपी पत्थर रह जाएगा, यानी कि फास्फोरस की आपूर्ति हमें जो पौधा को करनी है वो नहीं है पाएगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, यानी कि अब जो है कृषि को ज्ञान विज्ञान दोनों को आप सबको ध्यान रखो जरूरी है, तभी सब चीज़ ठीक ठाक चलेंगी। अब कार्यक्रम में सुनवा में एक और प्यारा सा लोकगीत या के बोल हैं, मुरलिया मोहन की प्यारी, जय गायो है दामोदर शर्मा ने, सुने ये लोकगीत।

दामोदर शर्मा के स्वर में आप सबने लियो या लोकगीत को आनंद। चलते चलते मौसम के हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार देश के कई हिस्सों में अगले 6-7 दिन तक गर्मी और तेज बनी रहने की संभावना है। तो किसान भैयाओं, IMD के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगो है और 2-3 दिन में दक्षिण पूर्वी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कछु और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़े रहने की संभावना जताई गई है। और आप सब देख ही रहे हो कि बांदा 21 मई को गर्मी के मामले में सबसे ऊपर पहुंच चुका है और मथुरा में भी वही स्थिति करीब करीब है। यहाँ 47 के आसपास 46.5 तापमान यहाँ रहे और बांदा में 47-48 डिग्री रहे हो। तो गर्मी की अपनी जो घर से निकलने के समय खेतीबाड़ी के कामन में विशेष ध्यान रखें कि गमछा लेके निकलें, पानी की बोतल लेके निकलें और अपनों बचाव करते भय ही खेती के कामन को करें। तो देखो किशन भैया, आज के कार्यक्रम की समय अवधि समाप्त हो रही है। अगले कार्यक्रम में फिर आप सब से मुलाकात होगी नए

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे दिलीप यादव। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुनी है भक्ति रचना फिल्म जय संतोषी माँ से। और इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्यिक इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हास्य वार्ता अब सूदे लोगन को जमानो नाए। वार्ताकार हैं बसंत किशोर पाठक।
1: काई ने ठीक ही कही है कि भूत सोचे बावरो भविष्य जाने राम, वर्तमान को संवारिए जे मर्दन को काम। जाके अनुसार भूतकाल तो सीधेपन में बड़े आराम ते कट जाए, लेकिन जे वर्तमान काल को काटनो बहुत कठिन है गयो है। जे जमानो ही काई और मट्टी को बनोए जो काटे ना कटे, जाके काटवे के काजे दो ही बात है। पहली तो जे के मूर्ख बन के जिये ये तो सही है, क्योंकि आज के जमाने में सूधे लोगन को जमानो ना है। जा लिए बाकू आज के जमाने में चंट चालाक चापलूस चुगलखोर और चमचान रूपी गुड़ंती और आठों घाट कुंभेत बाय दक्ष होना चाहिए, तभी बाको जीवन सकल है सके। ये बिल्कुल सही है कि अब सूदे लोगन को जमानो ना है। आज के शब्द कोश के अनुसार ये सूदोपन सबसे बड़ी योग्यता मानो गयो है। ऐसे प्रकार के लोगन को सिवाय निराशा के जीवन में कछु ना मिले और उनको जीवन भी दूभर है जाए जा समाज में। आज के जमाने में ऐसा कोई ही बिरला होगो जाने सूदो होते भाई शिक्षा क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र में नाम कमायो होए, धन कमानो तो दूर की बात है। हमारी आप बीती घटना है 5 बरस पहले की। हम अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर है के अपने गांव में शांति से समय काट रहे, यानी गांव में हम जनसेवा और घर में गौ सेवा और बहु सेवा करके अपना समय काटो करते। हमारो सादो जीवन उच्च विचार की राजनीति गांव में बहुत प्रसिद्ध है गई, लेकिन जे अवसरवादी और लपका संस्कृति के जो ओतप्रोत नेता है वो हमते बहुत बैर रखवे लगे। आज के समय के जे नेता बहुत ही कुटिल चालाक चुगलखोर और चापलूस प्रवृत्ति के कारण हमें नीचो दिखावे के चक्कर में रहे। हम अपने सीधेपन के कारण उन नेतान के जाल से निकल ही आते, न जाने बा देना कौन सा योग हमारे ऊपर आए पड़ो। जा दिन हमारे गांव के मुखिया ने हमें अपने मीठे मीठे जाल में फंसा लियो और हमें प्रधानी के चुनाव के काजे ठड़ो करवाए दिनो। हम न जाने कैसे मुखिया जी की बातन में आए गए, ये जरूर हो कि उनने हमारे सूदेपन को पूरा फायदा उठाया। हमें चुनाव लड़ावे को उनने पैसा तो पार्टी से लीनो और खर्चा हम ते करायो। चुनाव में जब तलक हमने अपनो पैसा खर्च कीनो, जब तक हमारो खूब प्रचार प्रचार और प्रसार जीत की उम्मीद हमें खूब दिखी। हमारे संग भीड़ भाड़ भी खूब रहवे लगी, लेकिन एक दिना चुनाव ते पहले हमारा हुआ एकदम शांत है गयो। हमें ऐसे लगो कि हम चुनाव में बैठ गए हों। बाद ना तो कोई हमारो नाम लेवा हो और ना कोई वोट देवा जाए, देख के हमारी सगरी जमीन खिसक गई। हम भागे भागे उन छोरा छापरे और उन मुखिया जी के पास गए तो हमारो चेहरा एकदम फक है गयो, हमें काटो तो खून नहीं। हम जा पूरी घटना को देख के उन पे हर्राए के सभी पे टूट पड़े और कहवे लगे, भैया मैं ही तुम्हें ऐसो बहादुर सिंह मिलो, जागो तुम बीच मजदार में मोह छोड़ के मेरे विरोधी उम्मीदवार के यहाँ मिल गए और बाकी यहाँ तुम लड्डू कचौड़ी की जोनार उड़ा रहे हो। मैंने तो तुम्हें अपना सगरो तन मन धन समर्पित कर देना और तुम अब जो मेरी मिट्टी खराब कराए रहे हो। जब ही वह जोनार में थे एक बुड्ढो मुखिया ठाड़ो भे गयो और हंस के कहवे लगो, लाला तुम तो बहुत ही भोरे हो, जाके पास धन बाके पास हम। लाला आज को जमानो छल प्रपंची और धोखेबाजन को है, जो कहो वो करो मत। हमारो कहा है हम तो विधायक जी के चमचा हैं, जहाँ पे गुड़ गरेगो वहाँ हम और हमारे संगी वहीं पे गरंगे। चुनाव भयो हमारी जमानत भी जब्त है गई और चुनाव के हार के हम औदे मो जमीन पे ऐसे पड़े जो आज तक न उठ पाए हैं और सोच के यही लगे कि ये राजनीति हम जैसे सूधे आदमी के लिए ना है। काई ने ठीक कही है, देख सपेरे की हंसी मुखिया गए से आए, चमचा काटो ना बचे,

0: नाग डसे बच जाए, जबी तो कहवी वारी कहे अब सूदे लोगन को जमानो नाए। कछु दिनान पहले की जो दूसरी घटना है, हम वृंदावन में रंग जी के मंदिर पे रथ को मेला देखवे के काजे गए। मेला में काई के दो छोटे छोटे बच्चा जोर जोरते रोए गए। हमें मालूम पड़ी कि ये दोनों बच्चा मथुरा के हैं और अपने मैया बाप से बिछड़ गए। उनके रोवे को कारण देख के हम बहुत व्यथित है गए। उनको कई जगह दिखायो और निराश है के दोनों बच्चन को हम अपने घर पे ले आए। बच्चा अपनी संगीतमय विभिन्न रागनते ऐसे चिल्लाए चिल्लाए के रात भर हमारे घर पर रोते रहे और सवेरे हमने उन पर दया भाव खाए के और समाज सेवा की कछु भावनाते उन बच्चन को एक रिक्शा में बैठाए के और एक घंटारी लेके गली गली बाजार बाजार में घुमाए के ऐलान कर करके शहर में घुमाया, भैया जाके बच्चाएं देख लो ले जाओ। दो दिना तक उनको कोई भी लेवारो ना आयो। दोनों बच्चन ने हमें ऐसा चक्कर घन्नी कर दियो कि हम अपने सगरे कामकाज भूल गए। कभी रोए तो कभी फरमाइश करें कि हम रबड़ी खाएंगे, तो कभी कहे हम आइसक्रीम खाएंगे। इन दोनों बच्चन ने हमारे घर को क्रिकेट का मैदान जैसे बैंड खेले स्टेडियम बना दिया हो। कभी ड्राइंग रूम में लेग क्रिकेट तो कभी पंच कंकड़ी खेल खेले, जा कारण घर के सगरे कांच और कांच के बर्तन, ड्रेसिंग टेबल और भी जो सामान है सब गेंद मार मार के ऐसा सत्यानाश कर दिनो कि मान लो वहां पे कोई पानीपत की लड़ाई भई हो। दोनों बच्चा हमें अपने माता पिता की मूरत देखने लगे और हमें वो इतने प्यारे लगवे लग गए कि हम भी उनके ब्याहों में फंस गए। उनको संबोधन भी हमारे पति मम्मी डैडी को है गयो। एक दिन चौथे दिन अचानक ही दो सिपाही हमारे घर पर सवेरे सवेरे आए टपके और कहवे लगे कि उन्हें दरोगा जी ने थाने पे बुलाया है। थाने को नाम सुन के हमारे होश फाकता उड़ गए, हमारी सगरी समाज सेवा कीचड़ में फंस गई। डरते डरते हम जब थाने पहुंचे तो दरोगा जी हमारे ऊपर भूखे भेड़िया की तरह अर्राय के बोले, आज से चार दिन पहले तुमने अनाथालय से दो बच्चान को अपहरण कीनो है। इतो ही सुन के हमारे सगरे होश भूले गए और कांपते गए और गिड़गिड़ाए के भाई बोले, सरकार हमने जे कछु नाय कीनो, हमें तो जे दोनों रथ के मेला में मिले मथुरा के बताए रहे तो मैंने हम यहाँ ले आए। मैंने तो अपने पैसा खर्च कर करके मुनादी भी कराई, रोजाना बच्चन की फरमाइश भी पूरी करी, तापे आप मेरे ऊपर इतने घिनौने आरोप लगा रहे हो। जहाँ पे दरोगा जी बोले, पंडित जी तुमने इन बच्चान को मेला में ते लाए के सगरी समाज सेवा पे कलंक लगाए दिनो, जे सगरो प्रकरण तुम्हारे सूदेपन को है। आज ते तुम जे गांठ बांध लो कि आज को जमानो सूदे लोगन को ना आए, अब तो तुम्हें सगरी कानूनी कार्रवाई पुर के मुझे किस्सा खत्म करानो पड़ेगा। जैसे तैसे करके गांधी जी को नाम लेके थाने से अपने खिलाफ रिपोर्ट खत्म कराए के हमने शांति लई, जबकि हम अपने सूदेपन के कारण इन बच्चान के चक्कर में फंस गए काई। और फिर हमने शपथ ले लेनी कि जा प्रकार की समाज सेवा हमारे काज ना आए। देखते देखते अब जमानो बहुत बदल गए हो, आज को जमानो तो जे है कि चोर ते कहे कि चोरी कर और साहूकार ते कहे कि जग तो रही हो। पहले समय की और आज के समय की समाज सेवा में जमीन आसमान को अंतर है। जभी तो हम दुखी है के कहें अब सूदे लोगन को जमानो ना आए, अब तो जमानो है लपकान को चमचान को।
1: ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे हास्य वार्ता अब सूदे लोगन को जमानो ना आए। वार्ताकार थे वसंत किशोर पाठक। श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें, संध्या 7:31 पर हम प्रसारित करेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। यदि आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का फिल्मी गीत तो कीजिए हमें व्हाट्सएप संदेश। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर 94122 25575।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आपके विशेष अनुरोध और प्रतिक्रियाओं के लिए हम अपना फोन इन कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का पुनः प्रसारण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी और इस कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। यदि आप भी हमारे कार्यक्रमों के विषय में अपने सुझाव और प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीफोन नंबर 25:30-135 पर फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगाएं, टेलीफोन नंबर 25:30-135। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1 करोड़ 35 लाख से अधिक मकानों की हुई गिनती। और

0: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले चार दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
2: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
0: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आज से राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। आज 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
3: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज यानी कि अराउंड 600-800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल

0: न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आज 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आज लखनऊ के जिला न्यायाधीश मलखान सिंह के नेतृत्व में एक साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ती ईंधन खपत के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
1: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है, इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्य क्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
0: उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट पनियावा रेलखंड में उन्नावला पिपराइच स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते मुरादाबाद मंडल में 18 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 28 मई से 8 जून तक विभिन्न तिथियों में ट्रेनों को निरस्त और परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रयागराज में आज दोपहर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा में पारा 45 डिग्री रहा। राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के पास रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
2: प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत आगामी 3 दिनों के लिए 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद के 4 दिनों में 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: 가.
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की तेज रफ्तार, फिर भी नई उम्मीद, नई आशाओं और आपके ढेरों संदेश, साथ ही साथ फिल्मी गीतों के साथ लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम शाम सुहानी। तो देर न करते हुए करते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के इस पहले संदेश के साथ। संदेश प्राप्त हुआ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, जनकपुरी से पिंटू राजेंद्र और इनके सभी परिवारजन। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज। गुमला झारखंड से SM जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होदा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्माला और ओम कुमार सुरलकर। जज्जर हरियाणा से जुड़े बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, शाकिर अलकमा खत्री, अल्तमश रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। गुगावा से इसहाक लोलामनी, उमर कासमी और अयूब। खंडवा से हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम, ज्योति और देव किशन, इन्हीं के साथ भावना मानस कनिका। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और गर्वी हिमाक्ष। श्रोताओं आप सभी से अनुरोध, यदि आपका नाम एक बार आ चुका है तो बार बार संदेश ना भेजें। मजनू कटिला से कमल बालूजा, मधुसागर बालूजा, सतना MP से उमंग आकांक्षा और माही मलिक। धामणगांव महारा से भागवत देते पाटिल, लक्ष्मी समर्थ और सानिका देते पाटिल, नादुरा से शिवाजी राहुल उगले।

पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत गुड्डी भगत, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुतासु, अर्णव और सत्यमानंद। जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद और सानवी देशमुख। अगले संदेश के साथ सनावा से जुड़े हैं शेख मूसा मोहसिन। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं कल्याण मुंबई से किशोर हिब्राले, सुजाता प्रतीक हिब्राले, भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीतिक आर्यन और कार्तिक वर्मा। अगले संदेश के साथ पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशु, रिदान और तुलसी मस्कीन। पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से

दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। दरियापुर भावली मारा से गजानन येले, नवदीप येले, सुशील येले। शेरी वडनेरा कुला से अरुणा बलदेव, आदित्य दामोदर। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, अमरजीत, विमला, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। मुंबई से अनु शमशुल और अनुराज बेनारा। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

या श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं करणवीर हाउस बुच्चो कैंचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर दपिंदर, वरिंदर एकम दमन और अभिजोत। इसी के साथ अगला संदेश हमें मिला है वरवट बकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल हागे और दिव्या हागे का। अगली फरमाइश हम तक पहुंचाई है रसीड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या और डिकेश साहू ने। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, ओम दयानंद, ओम कुमार और साई गायकवाड़। नेहरू चौक पेटर से सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरजिंदर सिंह चावला और इनके सभी परिवारजन। गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूबी। आजाद रोड सनावत से अलकमा खत्री, फारूक राफिया, अदनान और सलमान खत्री। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, दीपक और अनुषी श्याम कुमार। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल डावर, जियाउलहक, उमर, राजेंद्र कटारे। धामड़गांव महाराष्ट्र से भागवत देटे पाटिल, लक्ष्मी, समर्थ, सानिका और इनके सभी परिवारजन। नादुरा से शिवाजी और राहुल उगले। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र, प्रजापति, सावित्री देवी। मोहाली पंजाब से बब्बल, ओम प्रकाश मल्होत्रा। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारुतराव पंचाल। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। अगले संदेश के साथ जुड़े हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले और आरती जोधले। नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत, स्वीटी छाबड़ा। मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदा रानी, हिना कौसर जुड़े हैं जिला बिजनौर से। मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साकी पवार, अलमास बानो, मोइन और हसनैन पवार। संदेश मिला लक्कड़ बाजार खंडवा से। लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला, लाडली, रिमझिम और सक्षम चौबे। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू हसमुखलाल, बुलबुल, संजीव, बंटी जिंदल। अमरावती कैंप महाराज से दिलीप रामेकर, हर्षा, अक्षय, रुद्र।

मित्रा और परिवार के सभी सदस्य पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से जुड़े हैं। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक, कैतल हरियाणा से मधु नायक जुड़ चुकी हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली मोनिका रानू। बेरुलाल धाकड़ और भोला प्रवीण रियांश प्रतीक। संदेश मिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। कलानौर से जुड़े नरेंद्र, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना अक्सा, नाजिया इब्राहिम और अदाब। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी गंगानगर राजस्थान से। अगले संदेश के साथ सोनू, रवि, राज, गुलशन, लकी। संदेश मिला बलदेव नगर जालंधर से। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। फिल्म का नाम बेफिक्री, आवाज अरिजीत सिंह की। इस गीत को लिखा जयदीप सानी ने, संगीत विशाल शेखर का।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट हेमलता। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश, विजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी, सोनाली सोनम आशीष विश्वकर्मा, संदेश मिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ आप सभी जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक शर्मा, संबलपुर कांकेर से फागुराम ज्योति ओजस्वी यादव, काटा रोड वाशी मारा से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा परिधि मायरा सुरोशे, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक अनिल जयवीर डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र साहिल बिट्टा बजाज, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश नीलम नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता जुड़ चुके हैं। अगले संदेश के साथ कुंडलवाड़ी मारा से गंगाधर विजय लक्ष्मी। अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, अकमल और नफीसा प्रवीण, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण कोमल, किरण कपिल और कुणाल मेहरा, राजेंद्र अंजू मोहित लकी तान्या नारंग डबवाली से, गमहरिया से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार आर्य कुमार जायसवाल, जिला गाजीपुर से सुरेश उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी बब्बू डब्बू, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा और पूजा श्राव्या रामटेके, जैन मंदिर वाली गरी कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी, राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा रुद्र रानी मुकेश कुसुम और रूपा। इन्हीं के साथ अगले संदेश शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया साईरा सपकाल, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मधुबनी बिहार से ज्योति श्वेता स्वाति सुशांत चुलबुल और इनके सभी परिवारीजन, दरभंगा से कुशेश्वर कांति भूलिया रजनी, विरमगांव गुजरात से अजीत भावसार प्रमिला भावसार, इन्हीं के साथ भावेश राकेश और इनके सभी परिवारीजन, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सैनी, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहद्दीन फजान फरहान और समायरा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत शत्रुघ्न गौरव जानवी और दर्श, श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार अविका जीविका सानू अर्चना कुमार, कोयते बस्ती पुनावले से अजय करिश्मा अविका साइसा सोनवने, गुरुवंश श्रीवास करुणा आयुष विवेक और आयुष श्रीवास, दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति राजेंद्र प्रहलाद उर्मिला और उमेश, नांदेड़ से जुड़े प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज और पीआर जैन जुड़ चुके हैं। अगली फरमाइश के साथ आप सभी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी लकी विकी नानू रौनक और रविंद्र, जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकैस्ट्रो रोजी पर्ल विलिस डिकैस्ट्रो जुड़ चुके हैं, बीट शहर से नंदकिशोर घटे संगीता साक्षी जयश्री मेहत्रे अंजलि और बाबा साहेब करवा रामनिवास अग्रवाल धनंजय पीबी कुलथे,

महादेव पारा से मीरा सिमरन और योगेश कुमार रजवाड़े, श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी बेबी वियोमिनी पुरंजय, कविता गोविंद सिमरन और प्रजापति परिवार के सभी सदस्य, बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब जुड़ा है, आप सभी सुधा शर्मा, काजल मीरा, अनामिका शर्मा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत, सोनम वर्मा, राजनगर मधुबनी बिहार से राजू कुमार गुप्ता, विनीत, रविराज, गौरव और इनके सभी मित्रगण। बबुरी बाजार चंदौली से विजय सरोज जायसवाल, जमशेदपुर से मुराहू देवंती जायसवाल।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे एआर रहमान और इरशाद कामिल की आवाजों में फिल्म तेरे इश्क में से। और इसी के साथ कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न होता है। फिर से हाजिर होंगे आपके ढेर संदेशों और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने पड़ोसियों का खूब सारा रखिए ध्यान और दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आपने सुना ये गीत फिल्म परिणीता से। इस गीत को लिखा सोनंद खिरकिरे ने, संगीत शांतनु मोइत्रा का था।

केके की आवाज़ में आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम द किलर। गीत लिखा जलील शेरवानी ने, संगीत साजिद वाजिद का था।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुना ये गीत सोनू निगम की आवाज़ में, फिल्म का नाम हम हो गए आपके। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान, FM 102.2 MHz पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। वनितालोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी 25 मई को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में विषय रहेगा गर्भाधान की समस्या, कारण और निवारण। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94-122-25-575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में गर्भाधान की समस्या, कारण और निवारण विषय पर संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का, तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मन के कुछ गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मन के कुछ गीत। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण को।

यह श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मन के कुछ गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत को आवाजें दी थी हेमा सरदेसाई और उदित नारायण ने। और इसी के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्म मन के कुछ गीत। इस फिल्म के सभी गीतों को लिखा समीर ने, संगीत संजीव दर्शन ने तैयार किया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत

0: और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
0: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोध

0: तक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की ओर वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा

0: करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नवरंग कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हैं शुक्रवार के दिन आपका पसंदीदा कार्यक्रम नवरंग लेकर। इस कार्यक्रम में आप भी अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। कीजिए हमें व्हाट्सएप संदेश। संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर 9412-25-575। कार्यक्रम में पहले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं गांव गोपी की नगरिया से मिट्टन लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा, गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके सभी परिवारी जन, गांव नौदरा से कोमल मास्टर, जसोदा, सूरज, रोहित, चंचल, अंजना, शिवानी और इनके मम्मी पापा, गाँव कुमोदवन से रमेश, सुनील, रचना, गब्बर और परिवार के सभी सदस्य। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, सोनिया, शिवांश, चुन्ना। धामड़गांव महाराज से भागवत एटे पाटिल, लक्ष्मी, समर्थ, कुमारी सानिका और इनके सभी परिवारी जन। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता।

तनीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंशबत्ता। पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजौरिया।

फाजा अली का पंजाब से खेड़ा परिवार जुड़ चुका है आप सभी, भूषण, विशु, विशाल, लाड़ी शालिनी और इनके सभी सदस्य। नांदेड़ महाराज से ज्योति और इनके सभी परिवारी जन। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, सुभय और शुभम, अक्षय सेन। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल रॉय। बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित, हैप्पी रॉय। धांडी नांदुरा महाराज से श्री कृष्ण, संदीप, अमूल्य बाठे। सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, मुकेश, इंदिरा, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया। अगले संदेश के साथ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल, प्रियांश, भाव्या देवांगन। दादरी गेट भिवानी से कोमल, कृष्ण, कपिल और कुणाल मेहरा। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता, प्रतीक हिवराले। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा। सीटी दीवाना जनकपुरी से पिंटू, राजेंद्र और इनके सभी परिवार के सदस्य। सुभाष गोदारा, विमला, इंदु पार्वती, हिमांशु और इनके परिवार के सभी सदस्य। फाजालिका पंजाब से। कोली नांदेड़ महाराज से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओम कुमार, साई गायकवाड़। कुमार हीरा सहारनपुर से सायद मसरूर, साइना अक्सर, नाजिया इब्राहिम, अदीम हसन। गांव उस पार से जुड़े यादराम, वीरेंद्र कुमार, भोली, मनीष, काना, कोमल, लड्डू, वैष्णवी, प्रीति, पिंकी, ओमवती, मनोज और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगली फरमाइश के साथ गुजरात गांधीनगर से सुरेश, मंजुला, विशाल, निशा। आइए आप सभी को सुनवाते हैं आप ही की पसंद पर ये गीत। गीत को स्वर दिए हैं श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी ने। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत शिव हरी का, फिल्म का नाम चांदनी।

Bye.

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश चौहरी। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता विशाल, विवेक, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, मोहिनी कल्पित, गर्वी, हिमाक्ष। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण, अंजनी, रजमत, मुरली नीरा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा। पाहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण, चंद्र किरोड़, प्रीति और छाया बंछोर। पीहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका, रिया जिया, तुषी, आयुषी, अनिरुद्ध, मुन्नी, जयप्रकाश, बसंतलाल, पन्नालाल।

रोहिदास चौक पंढरपुरी सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज, ऋषि कृष्णा घोड़के। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और इनके सभी मित्रगण। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन पल्लवी प्रकर कुशल, नीति सुरभि

अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, दरियापुर भावली महाराज से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप अशोक येले, शेरी वटनेरकोला से अरुणा बलदेव आदित्य दामोदर। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र तारा देवी, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार माया देवी, राहुल विनीत सोनम वर्मा जुड़ चुके हैं। नेहरू चौक पैटर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद सोनल, सिया जाधव। जालना शहर पंजाब से सोमनाथ, गीता, ओम सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश, किरण, लव्या, आरव, मेगा साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, एसके, पप्पी खुराना। गांव चौलदा बागपत से संजय नमन, अपार ढींगिया। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता, सूरज, पीआर जैन जुड़ चुके हैं। कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, संदीप मगड़ और इफ्जाल रामगढ़ कैंट झारखंड से। दिलीप, हर्षा, अक्षय, रुद्रा और रामेकर परिवार के सभी सदस्य राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। फिल्म का नाम अनोखी अदा, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, पूजा बेबी और डॉली तामुरिया, इन्हीं के साथ राधिका प्रभा देवी तामुरिया, अल कबीर। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां संदेश प्राप्त हुआ आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधुसागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग आकांक्षा, माही मलिक। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोतागण, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप एकम, दमन अभिजोत। कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक सविता, अनिकेत ऋषिकेश, जीविका सानिका दले, पुनावली पुणे से अजय करिश्मा, अविका विशाखा सोन बने, बेगम इशत अक्रम, अक्रम हुसैन, वसीम रूबीना, आरिज नदीम अक्रम, शमीम ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी महसौल सीतामणि से जुड़ चुके हैं, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, फरांसी हिसार से। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक शर्मा, रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, माधुरी किरण किशनगंज बिहार से जुड़ चुके हैं, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार जुड़ चुके हैं, कोका भिलाई से हमारे सभी श्रोतागण जुड़े हैं, उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष, नंदिनी जंगेल, धमला ग्राम सुकरी कला से अमित शकुन, आरुषि ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल। नरवेल नगर महाराज से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल, सोपान नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा,

जसवीर जसी सीता और गीता, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परबणी महाराज से रूपे संघ गई, महेश प्रज्ञेश प्रीतेश और इनके परिवार के सभी सदस्य, पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा जुड़ चुके हैं। जैन मंदिर वाली गरी कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर येमेकर, प्रमोद प्रदीप येमेकर, सुधाकर राजे जादव, प्रशांत संचित प्रथमेश सर्वद प्रणाली सानवी कल्पना जाफराबाद से, मलोट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत रमन बलजीत और दिशा, मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा, हर्ष आहूजा, दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से। श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा। कुम्हार गली कोलगांव से पांडु उषा रानी प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक प्रथमेश संतोष और पांडुरंग कुम्हार। सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, दीपक अनुषी श्याम कुमार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम विशाल प्रीशा, दिशानी निमित प्रिया आहूजा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश मैंडी सौरभ साइना निवान शर्मा जुड़ चुके हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष और डब्बू बब्बू। उमरखेड़ महाराज से गंगाधर, प्रियंका, सम्यक और स्वरित। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहा फाचालिका पंजाब से विनोद, सीमा, याचिका और विदा देवी ने। डाब की रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव, आरव अर्पिता। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण यादव।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान, सुनिधि चौहान और कृष्णा की आवाजों में। फिल्म का नाम हमको दीवाना कर गए, गीत लिखा समीर ने। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल रचिता, केशु रिदान खुराना। गंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुलफराज और मुस्कान। बीट शहर मारा से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयशी, अंजलि, बाला साहेब करवा, राम निवास, धनंजय, पीबी कुल थे। अगले संदेश के साथ भूत चौराहा बुलंदशहर से पंकज चंचल, रशिका, आकृति, वंशराज और एमएस अब्बासी,

कस्बा गुन्नौर से पारुकली, फैजी, पराज, परहान, परहीन, फारिया और ताहिरा, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, परदीन सुहान अड़जान और इनके परिवार के सभी सदस्य। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानुगुला गोपाल माहेश्वरी, प्रवालिका विष्णुवर्धन, विघ्नेश। श्रोताओं, आपसे एक बार पुनः अनुरोध, एक बार संदेश भेजने के बाद बार बार संदेश ना भेजें। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक, पूजा खटक। सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया। अनारकली बाजार जगराव से सुनील कमल, दीपिका गव्या, सुच्चा सिंह, विनोदपुरी, जयपाल यादव। नवरतन हटा बाड़ी हाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, देव देवांशु, डब्लू। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, वीमा वैभवी विनोद विभूति

अंशु बबली, प्रियांशु साहू। श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन राजेश बब्बर। मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी। बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल राघवेंद्र, अरविंद रागनी रिया रेणु, दिव्यांशी आराधना, रोनिका चंद्रेश और सुनील पाठक। सुनीता शिंदे, यशराज प्रशांत, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के, पर्णपुर रोहिदास चौक से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र, साहिल और बिट्टा बजाज। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस और इनके सभी परिवारी जन। श्रोताओं, बार बार अनुरोध के बाद भी आप एक ही संदेश बार बार भेज रहे हैं, ऐसा करने पर आपका संदेश नहीं पढ़ा जा सकता है। चंडीगढ़ से सतीश और विमला अनेजा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार और खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, मुकेश, जगताप। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजूरंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। दतार सिंह शेखावत, संगीता सुचार, रिंकी शेखावत, सीकर राजस्थान से। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य मोहिनी, बलवीर सिंह। संदेश प्राप्त हुआ दूलापुर उत्तर प्रदेश से। मनोज कुमार, भव्या, काव्या, हेमेंद्र और इनके सभी परिवारी जन। रामगढ़ कैंट, अलीगढ़ से। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, नवीन, तेजांश, अनुराग और साकेत परिवार जुड़ा है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया, आयान बाबू। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार, रिमी, तनुश्री, अभय कुमार, प्रियंका और गुड्डू।

अंजू नारंग, मोहित लकी, तान्या नारंग, बठिंडा रोड, मंडी, डबवाली से। गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम और नजमुल होदा। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत। फिल्म का नाम तेरा मेरा प्यार, आवाजें बाबुल सुप्रियो और सोनाली वाजपेयी की।

श्रोताओं इसी गीत को सुनने की फरमाइश मिली अमरावती महाराज से हर्षा दिलीप अक्षय रुद्रा और रामेकर परिवार के सभी सदस्यों की।

श्रोताओं, इसी गीत और इन्हीं फरमाइशों के साथ आज का ये कार्यक्रम नवरंग अब यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। आज इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट हेमलता। अगले शुक्रवार को फिर से हाजिर होंगे आपके ढेरों संदेशों और फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत, फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का।

0: वाई चीट इंडिया, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे जुबीन नौटियाल की आवाज में।
1: Thank you.

पूर्णिमा और कुमार सानू की आवाज़ों में आपने सुना ये गीत फिल्म बोल राधा बोल से। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत आनंद मिलिन का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बेवफा से। गीत रचना समीर की थी, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, इस गीत को आवाजें दी थी जीत गांगुली और अरिजीत सिंह ने। फिल्म का नाम सिटी लाइट्स

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भगवान दास शर्मा का ख्याल गायन, निबद्ध है राग जय जयवंती में।

Ni da pa ma ga re.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भगवान दास शर्मा का गायन। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर

0: आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defence and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter-terrorism.
2: Aaj humne cyber security, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honour. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. She said bilateral relations have been elevated to the level of a strategic partnership, which reflects the growing maturity, depth and mutual trust in the India-Cyprus relationship. The government will launch a smart border project and make the entire border with Bangladesh and Pakistan impenetrable. Mr. Shah was addressing the Border Security Force investiture ceremony and Rustamji Memorial Lecture in New Delhi today. He said that work is in progress towards creating an impregnable